0: के आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
2: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
1: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
2: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
2: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
3: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
2: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैंसी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांस सही, जिंदगी सही।
6: नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
7: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
8: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
9: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
8: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
6: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
10: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
1: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
11: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
12: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
11: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
13: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
6: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
14: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश

0: दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, CBI ने मारे कई जगह छापे, NTA मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले UAE जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करे। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां। पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
5: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
6: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर मैं आरजे राज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम हर रोज अपने जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं, पर हमारी आज की बातचीत थोड़ी ज्यादा खास है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी किसी किताब की तरह कुछ पन्ने पलटते हैं और फिर शुरू होती है एक नई कहानी। हमारे वो सभी सपने सच हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही एक युवक के सपनों की दास्तान मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित CM युवा उद्यमी विकास योजना ने वाराणसी के चोबेपुर के सतीश के सभी सपनों को साकार कर दिया।
1: फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे हीरो रातों रात अमीर हो जाता है और उसका देखा हर एक सपना हकीकत बन जाता है, पर वास्तविक दुनिया में ऐसी बातें महज एक कल्पना है।
0: वाराणसी के एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद सतीश के सारे दोस्तों का लक्ष्य दिल्ली बम्बई में ऊँचे औहदे की नौकरी पाना था, पर हमारे सतीश की अभिलाषा कुछ और ही थी।
1: मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ और मेरे लिए अपने माता पिता और गांव को छोड़कर जाना तर्कसंगत फैसला नहीं होता। बाबूजी ने मेरे लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया था और अब मेरी बारी थी कि मैं अपने अभिभावकों के बुढ़ापे की लाठी बनूं।
0: सतीश का मन लगातार अपने और परिवार के भविष्य को लेकर बोझिल रहता था।
1: मेरी रातों की नींद बस इन्हीं ख्यालों को सोच सोच कर उड़ सी गई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़े या उनसे कहीं बहुत दूर जाना पड़े।
0: दोस्तों, सतीश जैसी दुविधा हमारे देश के हजारों युवाओं के मन में होती है, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर संसाधनों की कमी के चलते उनके सपने बस उनकी कल्पना में ही रह जाते हैं।
1: महीनों बीत गए थे अपने शहर में इंटरव्यू देते देते, मेहनत के हिसाब से कहीं पर भी पैकेज नहीं जमा। फिर एक दिन सुबह अखबार खोला तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में पता चला।
0: और दोस्तों, यही है सतीश की कहानी का वो पन्ना जिसने पूरी दास्तान बदल कर रख दी। इससे पहले कि सतीश आपको आगे की कहानी बताए, मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आखिर है क्या। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जिससे वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: जैसे ही मैंने इसका इश्तेहार को देखा तो फटाफट से मोबाइल पर इसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और आवेदनकर्ता को किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया होना चाहिए या मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
0: श्रोताओ, इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
1: मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल में देखा तो मेरे जैसे दो बैचमेट्स रवि और निर्भय थे जो मेरे ही जैसे समस्या से जूझ रहे थे। मैंने उन्हें भी इस योजना के बारे में बताया और हम सभी ने साथ में ही हमारी दुविधा का हल निकालने की ठान ली थी। सबसे पहले हम इस योजना से संबंधित बैंक गए और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें लोन मिलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
0: साथियों, हमारे देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा की मिशन रोड से शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधित उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना, प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
1: जितनी जानकारी मैंने प्राप्त की थी उसके हिसाब से मुझे योजना को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, पर मेरे साथियों के मन में थोड़ा डाउट था, कहीं हमारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा? पर डॉक्यूमेंट को लेकर सभी का ये संकोच जल्दी ही क्लियर भी हो गया। जब हमने हमारी उम्र के एक नौजवान को बैंक में मिठाई बांटते देखा, उससे बात हुई तो पता चला कि वो भी युवा उद्यमी विकास योजना के जरिए अपना बिजनेस चला रहा है और जोरों शोरों से व्यवसाय चलाने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी भी तय कर दी है। फिर क्या, हमने हमारे भी सपनों को अपनी आँखों के सामने सच होते हमें भी दिख रहे थे।
0: अब सतीश और उसके दोस्तों की गाड़ी तो चल पड़ी, पर आप सभी के लिए योजना के चरणों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में 5 लाख तक की परियोजना हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण मिलता है और दूसरे चरण के लिए पहले चरण में लिए गए मूलधन पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होता है। साथियों, सतीश की इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम सुनते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी का ये मुख्य संदेश।
2: उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, जिसपे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा। महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए जो परियोजना लागत का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है स्वयं का अंशदान होता है वो सिर्फ 10% उनको लगाना होगा, सामान्य वर्ग के लिए 15% उसको लगाना होगा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के लोगों से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोजगार सीकर न बन के जॉब गिवर के बारे में सोचें और अपना स्वयं का व्यवसाय उद्योग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित करें।
0: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मन में सिर्फ नौकरी करना यही विचार आता था। मेरा खुद का बिजनेस होगा और मैं अपने साथ दूसरों को भी नौकरी देने में सक्षम बन पाऊंगा, ऐसा मैंने और मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था।
1: साथियों, इस योजना के तमाम फायदे हैं और कुछ लाजमी शर्तें भी हैं, जैसे डिजिटल लेन देन के सापेक्ष रूप 1 प्रति ट्रांजेक्शन तथा अधिकतम 2,000 रूपए प्रति वर्ष के अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी दे होता है। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी वित्तीय संस्थान ऋण वितरण हेतु पात्र है। तंबाकू उत्पादक जैसे गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट पेय पदार्थ, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम तथा भारत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होते हैं। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होता है। जिला स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए आप cmyuva.org.in विजिट कर सकते हैं।
0: जब हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक कंप्यूटर और डिवाइस सर्विस सेंटर खोलना है, तो बिना देरी के हम अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पहुंचे और वहां जाकर हमें पता चला कि आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के लिए MSME पोर्टल को लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया। ये पोर्टल पर लिंक आवेदन किया जाता है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत आवेदनों को बैंक में भेजा जाता है, जहां समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति एवं वितरण की व्यवस्था की जाती है। साथ ही बैंकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मार्जिनी मनी, ब्याज उत्पादन तथा CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था भी होती है। आज मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्हें महज वादे ही नहीं किए बल्कि धरातल पर कोशिशों को साकार भी किया। आज ये उन्हीं की देन है कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। सचमुच लीडर हो तो ऐसा, योगी जी इसी दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें मेरा सल्यूट है।
1: दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर निवासी सतीश और उनके बिजनेस पार्टनर्स रवि, निर्भय और उन सभी के परिवार वालों को आज महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपने शहर में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम भी हैं।
0: मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी ही असली फ्रीडम है और हम सभी युवाओं के लिए यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी है। ये नया यूपी है जहां अब युवा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और युवाओं के हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा धन्यवाद। और साथ ही रेडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, क्योंकि आपके सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश आपके साथ है।
1: साथियों, बदलते और प्रगति की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश की और भी कहानियाँ हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में। साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी कहानियाँ हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचा सकते हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राज। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी और बहुत ही खूबसूरत कहानियों के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है
4: हो भी क्यों ना भाभी राज कलेक्शन ने जो सजाया है आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी
7: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो
6: हाँ छोटी आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं खूब सारी मस्ती खाना पीना रेस्टोरेंट होटल और बहुत कुछ
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम रामपुर रोड मुरादाबाद
9: फिर से आप सभी का स्वागत है आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है श्रोताओं देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है हाथ में हल्का से दर्द तो है मगर कुछ नहीं है मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा खाऊंगा मेरे को आराम मिल जाएगा बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है तो बहुत इजी है बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते ही जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिसे भी बात करते हैं तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं मैम हाउ आर यू कैसे हैं आप जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद
10: थैंक यू सो मच मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद
9: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है
10: बहुत अमेजिंग
9: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो
10: डिफरेंट एरा
9: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है कुछ नया सा है
10: या एग्जैक्टली इट्स वेरी एक्साइटिंग A new thing, something new thing is...
9: थैंक यू सो मच मैम तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ दो लोग और भी हैं उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है सो सी आगे बढ़ते हैं मैम सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम
10: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए कहाँ से आ गए ये अभी एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है ठीक है एक होता है अक्यूट पेन एक होता है सब अक्यूट पेन और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ जो कि कोई जैसे चोट लग गई एक्सीडेंट हो गया ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है
9: हाँ जी
10: वो अक्यूट में आता है
9: ओके
10: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक रहता है ठीक है फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है दर्द हमारा नहीं जा रहा है तो वो दर्द हो गया या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया माइग्रेन हो गया कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया कमर का एड़ियों में होने वाला दर्द कूल्हे का दर्द तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो 3 महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है
9: ओके
10: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं
9: ओके बहुत ही बढ़िया तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है छोटे छोटे दर्द होते हैं वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है एग्जैक्टली सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं
10: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर हम कैसे बैठे हैं कितनी देर बैठे हैं हमारा प्रोफेशन क्या है ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल, तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा, जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की वो कम हो जाती है, थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
9: ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की,
10: ट्रीटमेंट देखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है, नसों का दर्द में क्या होता है पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है, तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक नोसिसेप्टिव दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं, वो देने के बाद में हम आते हैं जांचें कराते हैं, एमआरआई में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर, उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा, ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी, आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता, वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
9: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
10: बिल्कुल भी नहीं है
9: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
10: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं, आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं, जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
9: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
10: बिल्कुल,
9: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है, तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
10: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
9: जी,
10: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई वो सर मेरे दिमाग पे आओ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको क्या। अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं, ब्रेन में क्या हो रहा है ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
9: जी जी
10: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
9: ओके
10: ऐसे
9: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
10: डेफिनेटली,
9: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
10: बिल्कुल, क्या होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेन जी है, जेन अल्फा है,
9: बीटा है,
10: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
9: Exactly.
10: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है,
9: बिल्कुल मैम,
10: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
9: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें
10: जो बीच में भी हम देखते हैं,
9: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है,
10: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
9: करेक्ट, तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
10: देखिए माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया कितनी बार आपको हो रहा है अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन, सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीक से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर, और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
9: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
10: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई दर्द चला गया।

0: 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
1: तो मतलब ऐसे
0: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
1: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
0: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
1: ऑलराइट,
0: ठीक है,
1: अच्छा।
0: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
1: ओके,
0: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
1: ओके,
0: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
1: ओके,
0: हॉट फर्मेंटेशन,
1: मतलब फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
0: बिल्कुल नहीं है।
1: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
0: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
1: ओके, मैम कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है, मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
0: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
1: ओके,
0: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं, तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
1: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
0: बिल्कुल है,
1: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
0: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
1: ठीक है,
0: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
1: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक

0: नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
1: ठीक है
0: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है, या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि तीन महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
1: ठीक है,
0: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है,
1: ठीक है। ओके मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
0: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही है
1: मैम। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी दर्द,
0: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम, सही बोला। इनफैक्ट मैम, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
0: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है, ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
1: फोन,
0: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता, या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो चॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है, लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है,
1: ओके,
0: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
1: ओके, सो दोस्तों, आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
0: बिल्कुल दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
1: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
0: AI
1: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
0: नहीं, सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और हम आशा करते हैं कि, थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा, और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत, मैम थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333। क्या आप पुराने गर्दन, कमर, कूल्हा, कंधे के दर्द से परेशान हैं? तो संपर्क करें दर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर निदा नसीम से। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद लेकर आया है क्रोनिक पेन रिलीफ कैंप 17 मई रविवार को। यहाँ मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक तकनीकी से इलाज, वो भी बिना सर्जरी के, जैसे अल्ट्रासाउंड, सी आर्म गाइडेड नर्व ब्लॉक, पीआरपी थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और सभी जांचों पर 20% तक की छूट। समय याद रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। पता, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 9412504190।
3: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? मेरा नाम आरजे आनंद है, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों, कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू
4: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
3: जी सर, इट्स माय प्लेजर। सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
4: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
3: ऑलराइट।
4: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
3: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए, रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है? मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
4: ये अमेजिंग है बिल्कुल। अच्छा, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
3: ऑलराइट। अच्छा, पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
4: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूं।
3: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
4: नहीं, डेफिनेटली मजा तो।
3: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई, बड़े नॉटी होते हैं यार। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
4: सर, बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते नहीं डॉक्टर साहब, ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए। तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है। वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं। तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती हैं, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया। क्योंकि जब जब बच्चा रोता है, मम्मी क्या करती है, बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है, और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
3: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में, और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में? पूछूं,
4: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है। छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं। मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
3: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
4: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते हैं।
3: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा।
4: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
3: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस, आई होप आपको ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
4: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
3: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को, मुझे लगता है
4: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
3: बहुत बढ़िया। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
4: देखिए, बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
3: ओके,
4: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं।
3: okay.
4: तो हमें ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते।
3: okay.
4: पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है।
3: okay.
4: जो हम लोग अवॉइड,
3: क्या बात है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब।
4: देखिए, आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
3: करेक्ट
4: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
3: अब नहीं चलता है,
4: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं, हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाई चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल, ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
3: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
4: एग्जैक्टली,
3: ऑलराइट। अच्छा सर जी, प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं।
4: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं। और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं, और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
3: ओके, अच्छा, ओके। सो डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन, जिसे हम कह सकते हैं ना, कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
4: सर, दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
3: ओके,
4: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
3: ओके,
4: और मतलब इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से उन्होंने डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
3: ओके,
4: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है।
3: okay.
4: और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन अच्छा। भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
3: ओके, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारियां आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार, और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज के जेंसी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
4: सर, ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
3: ओके,
4: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
3: ठीक
4: है, बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
3: जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
4: डेफिनेटली,
3: ऑल राइट। जैसे कई लोगों का मिथ होता है, भाई आज कर लिया सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो कैसे चला जाएगा,
4: ऐसा नहीं चलेगा।
3: ऑल राइट,
4: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
3: ऑल राइट, अच्छा जी, चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को 5-5 महीने 6-6 महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
4: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह से यूज करते हो। कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो एक महीने में ही खराब हो जाता है।
3: ओके,
4: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट 6 महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
3: ऑल राइट, चलिए तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, तो ये क्या सही बात है?
4: इट्स वेरी ट्रू। देखिये, जो हमारे दांत का इनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है।
3: ओके,
4: बट अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं, पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा। ऐसे जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआ होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रूव बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रूव बन जाता है।
3: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
4: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
3: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
4: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में।
3: समझ,
4: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता।
3: हाँ,
4: वो
3: बिल्कुल
4: ठीक है, बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
3: ओके,
4: मतलब जिन लोगों को देखना हो गूगल

0: कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
1: अच्छा सर, कई बार जैसे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लोंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
0: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
1: ओके,
0: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसा रहेगा, तो जब खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है, ठीक है? तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता, ठीक है? आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। बट लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है, उतना गंभीर दर्द होता है।
1: तो सर, इससे बचने का
0: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो,
1: हाइजीन,
0: ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
1: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
0: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है? उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है, तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, ठीक है? तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई, माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई, डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है, वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
1: Exactly.
0: और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो।
1: तो
0: मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी, मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए, चुपचाप ब्रश उठाओ, ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
1: बिल्कुल,
0: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
1: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए, बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है, आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
0: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
1: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
0: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन किलर खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते।
1: करेक्ट,
0: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
1: ओह माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
0: जी
1: ओके। सो दोस्तों, देखिए तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूं, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसे रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
0: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन, लोकल रीजन मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी, ठीक है? कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
1: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है
0: नहीं? बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों दांत है,
1: ठीक है?
0: अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है, तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
1: ओके,
0: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेस आती हैं पेट से, वो बदबू करती है।
1: ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
0: सर, ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
1: ओके,
0: वंस ए व्हाइल ठीक है, हां भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
1: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं, कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में जाना है, वंस ए व्हाइल जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे, तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर, एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड डेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
0: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
1: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
0: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा। जब पायरिया, जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
1: ओके,
0: वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा।
1: ओके,
0: और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
1: ओके,
0: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है।
1: ऑलराइट,
0: अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
1: जैसे
0: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा
1: होती है।
0: ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसे लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
1: जी,
0: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
1: अच्छा।
0: और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखती लगा रही तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये उम्मीद था कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटखा क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल डाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी डाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल डाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब, डाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको डाढ़ उखड़वाई, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
1: ओह माय गॉड,
0: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दांत उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
1: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
0: हाँ, गलत है वो।
1: ओके,
0: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर।
1: ओह माय गॉड, कई बार ये होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
1: ओके,
0: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है,
1: Correct.
0: तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है।
1: Okay.
0: इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
1: ओके, अच्छा जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है, वो येलो परत क्या वो लाइफ में कभी हटेगी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके,
0: वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
1: ओके,
0: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके,
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके,
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है, और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे हैं, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती।
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली, ब्रश से ही साफ
1: मिला के। तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं, जागो, अब ब्रश करने की बारी। अब जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम सर। सो डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं, डेफिनेटली मतलब इट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आपका मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती हैं। आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल, आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे हैं, और वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर, अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं। और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं। इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बसरते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
1: एक्सपीरियंस होल्डर।
0: एग्जैक्टली, वो सारा स्किल का खेल है, अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार, मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा। इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटोप्रोजोल, ठीक है, रेव्यूप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा।
1: करेक्ट,
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है, जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस, कब्ज और इन सब चीजों से गुजरना
1: पड़ेगा। ओके, सो श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बार ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल डाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
0: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो, कैल्शियम, ये दांतों के लिए बहुत जरूरी है, तो इस तरह की कुछ
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी हैं, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है। अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा? बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है ना तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए?
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया इनको? जरूरत है,
1: जरूरत है, करेक्ट।
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो खिनमानी वो नहीं खाएगा,
1: करेक्ट,
0: ठीक है। आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा।

0: में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके।
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर, कुछ और कहना चाहते हैं आपसे? मुझे बात करके बहुत मजा आया। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
0: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुरादाबाद आके। तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
1: थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा
0: नहीं आएगा।
1: तो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। थैंक यू सर। एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहां सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात दोस्तों। सुबह उठो मुस्कुराओ और ठान लो कुछ कर दिखाओ, सुबह उठो मुस्कुराओ और ठान लो कुछ कर दिखाओ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। सोच बड़ी रखो क्योंकि सोच से ही दुनिया बदलती है। अच्छे संस्कार, सच्ची मेहनत और ईमानदारी, यही असली सफलता की चाबी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी, आप सभी के लिए खुशी यहाँ पर हाजिर है, आप सभी का फेवरेट शो लेकर। और श्रोताओं, यहाँ पर अभी समय हुआ है 10:10 एंड बहुत ही खूबसूरत दिन है। गुरुवार का, थर्सडे का दिन है और तारीख है 14 मई की सुबह। सुबह खुशी यहाँ पर आ गई है और मुझे पता है हमारे श्रोता भी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कुछ अभी ऑफिस पहुँच चुके हैं तो कुछ अभी रास्ते में हैं, और हमारी जो फीमेल्स हैं वो भी अभी किचन को संवारने में बिजी हैं। कुछ अभी ऑफिस जा रही हैं तो कुछ अभी घर के काम में व्यस्त हैं। सभी को हम नमस्कार कहना चाहेंगे। और श्रोताओं, आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत से कार्यक्रम में जुड़ जाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। करते हैं शो की शुरुआत एक खूबसूरत से गाने के साथ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। और दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हारते नहीं चलते रहते हैं। आप भी कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए, आगे कदम बढ़ाइए, तेज नहीं धीरे धीरे चलिए। यकीनन मानिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से गाने के उस पार। सुप्रभात श्रोताओं, गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए

0: फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने, जी हाँ, पसंदीदा शो में। शो का नाम है मॉर्निंग मस्ती और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी श्रोताओं। यह है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक सुना, फलक तक चल साथ मेरे। और क्या खूबसूरत एहसास था ना इस गाने में श्रोताओं, फलक तक चल साथ मेरे। कभी कभी ज़िंदगी में बस एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हर खुशी और हर मुश्किल में आपका साथ, आपका हाथ थाम के रहे, तो सफ़र खुद में खुद खूबसूरत बन जाता है। और हम भी आपके सफ़र के साथ ही, और आप भी देखिए हम तो आपके साथ बराबर चल रहे हैं, अब आप भी हमारे साथ कंटिन्यू चलिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर बराबर साथ साथ चलना है ना, तो आपको मुझे संदेश पहुंचाना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे श्रोताओं। लेकिन आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है जो आज सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आज 14 मई को एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला दिन मनाया जाता है, नेशनल डिसेंसी डे, यानी राष्ट्रीय शालीनता दिवस। आज का दिन श्रोताओं हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में बड़े बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा इंसान बनना। कभी किसी से प्यार से बात कर लेना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना एंड थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी जैसे छोटे शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल करना, यही छोटी छोटी बातें इंसान को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। और श्रोताओं आज की तेज़ भागती ज़िंदगी में लोग अक्सर शब्दों से, लोगों कई बार ऐसा होता है, कई लोग किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे सामने वाले का दिल दुख जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी एक मीठी आवाज़, एक सम्मान भरा व्यवहार और थोड़ा सा अपनापन किसी का पूरा दिन बना सकता है, बदल सकता है। तो मैं आपसे कहूँगी श्रोताओं, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करो कि वो आपको हमेशा याद रखे। और सबसे ज़रूरी है इंसानियत, एक अच्छा व्यवहार। अगर आप कितने भी बड़े बन जाओगे लाइफ में और अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो कोई भी आपसे सम्मानजनक बात नहीं करेगा, कोई भी आपको याद नहीं करेगा। लेकिन वहीं आप जैसे भी हैं, बहुत प्यारे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आपका सबसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो सब आपका सम्मान करेंगे और सब आपको याद भी करेंगे। तो मैं आपसे इसी विषय पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरा सवाल भी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे संदेश आए हैं बैक टू बैक, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि उनके बिना तो अधूरा है। और हमारे श्रोता इतने दिल से, इतने प्यार से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने संदेश यहाँ पर पहुँचाते हैं, अपने दिल के जो जज्बात हैं, जो बातें हैं वो हम तक पहुँचाते हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है जामा मस्जिद अकबानपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी का, और ये कहते हैं, ये मैसेज आनंद सर के लिए आया है। कहते हैं कि आनंद सर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब लगा क्योंकि आपने जो डॉक्टर साहब से बातचीत की और डॉक्टर साहब ने जो जानकारियाँ दी दांतों के संबंध में, बहुत ही लाजवाब लगी क्योंकि मैं भी दांतों की समस्या से परेशान था। इस जानकारी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि समय दांतों की सुरक्षित रखें, मतलब किस समय दांतों को ब्रश करने का सही टाइमिंग क्या है। कुछ कई बारी लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और वो लाइक ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो वो चीज़ों का नियमित साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने थैंक यू भी पहुंचाया है। लेकिन सर मैं आपसे कहना चाहूँगी ऐसे ही जानकारियाँ आपको सुनने को मिलती रहेंगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अगला मैसेज ये पहुंचाते हैं खुशी जी को, हमारा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी का, ये भी कहते हैं कि एफएम मुरादाबाद के सभी कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और जो भी जानकारियाँ आती हैं हमारी सेहत से जुड़ी हुई हम सभी सुनते हैं और उनको अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं। मैम थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से
बबलू साहू, और साथ में इनका मैसेज आया है जमुना देवी साहू। ये मैसेज हमें सरगांव छत्तीसगढ़ से पहुंचाते हैं, और गुड मॉर्निंग इन्होंने लिखा है, सुप्रभात आपको भी। इतनी दूर दूर से आप सुप्रभात गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमें, जानकर हमें ये संदेश जब आप पहुंचाते हैं ना, तो सच में दिल को बहुत ही अच्छा लगता है श्रोताओं। क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में आजकल लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है एक दूसरे को एक दूसरे को हालचाल मालूम करने का, एक दूसरे को पूछने का। लेकिन आप सब इतने प्यारे हैं, इतना कीमती वक्त हमें देते हैं, और इतनी खूबसूरत संदेश यहाँ पर पहुँचाते हैं ना, तो मेरा दिल जो है ना वो खुशी से झूम उठता है। अब आपका दिल भी खुशी से झूम उठेगा, एक ऐसा ही खूबसूरत सा गीत मैं आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आऊँगी श्रोताओं। तब तक आप भी मुझे अपने संदेश पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837-8968-96। रेडियो बजाते रहिए, और ऐसे ही खूबसूरत गीत, खूबसूरत जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी फिर से कहेगी, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और श्रोताओं मुस्कुराइए। सुबह का वक्त है, खूबसूरत सा दिन है आज थर्सडे का, और मैं कहती हूँ कि हर दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, और आप भी स्पेशल हैं। तो अपने आप को स्पेशल फील कराइए, अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और जिंदगी में आगे बढ़िए। एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए, इसको एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
5: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

बिल्कुल दोस्तों, हम आपके पास ही तो हैं। देखिए, अब आपने रेडियो सेट की ओर निहारी और हम आपके घर में हैं, आपके किचन में हैं, आपके साथ। जहां आप रेडियो को साथ साथ चलती हैं, वहीं हम आपके साथ चलते हैं। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी का। वेलकम बैक, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लेकर आती हूँ आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ। और यहाँ पर अभी समय की बात करें तो अभी वक्त हुआ है 10:39। और आप सभी की खूबसूरत संदेश तो यहाँ पर बैक टू बैक आ ही रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, मैं आपसे एक सवाल आज मेरा है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज हम अपने श्रोताओं से बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। क्योंकि आज मैंने आपको बताया है दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय शालीनता दिवस, और इसी पर हमने सोचा अपने श्रोताओं से क्यों ना मैं एक सवाल पूछूं और उसका जवाब आप देने के लिए तैयार हैं, ये बात तो मैं जानती हूँ। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी की छोटी सी अच्छी या शालीनता ने आपका दिल जीत लिया है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं और अचानक से कोई अनजान इंसान हमें मिल जाता है, हमारी कभी छोटी सी हेल्प कर देता है, या फिर जैसे होता है ना, कई बारी हम लोग रास्ते में चलते हैं, रोड पर चलते हैं, और हम खुद भी ऐसा करते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, बहुत गाड़ियां चलती रहती हैं, तो उस समय जब हम किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ थामते हैं और उनको रोड क्रॉस कराते हैं, तो वो जो खुशी होती है और वो जो मोमेंट होता है ना, सबसे प्यारा होता है। और जो वो प्यार से सर पर हाथ घुमाते हैं, ब्लेसिंग समय देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो तो हम जिंदगी में कभी भूलते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी आपके साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया हो और उस व्यवहार ने, शालीनता ने आपका दिल जीत लिया हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। या फिर आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है और वो सामने वाला इंसान भी आपकी तारीफ करता रहा और आपके जहन में अभी तक रहा कि हाँ, वो इंसान बहुत ही खूब थे, बताइएगा। अपना संदेश हमें पहुंचाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। श्रोताओं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और आज एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा है बताते हैं हम आपको। लेकिन उससे पहले कुछ और भी संदेश आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर लगातार आप सभी के बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं। एक संदेश हमें मिला है, यहाँ पर आया है सहारनपुर से, और सैयद मंसूर जी कार्यक्रम में जुड़े हैं, कहते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा आदाब कबूल कीजिएगा। बिल्कुल सर, आपको भी हमारा आदाब, और एक्सेप्ट हम करते हैं इतने प्यार से, इतने खूबसूरती से आपने जो संदेश को डेकोरेट करके भेजा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 5 दिल तो सर ने सजा के भेजे हैं और 2 रोज भी भेजे हैं। अरे वाह, क्या बात है, लोग एक दिल से ही परेशान हो जाते हैं, आपने 5 दिल भेज दिए सर, वैसे शुक्रिया। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, और ये मैसेज पहुँचाते हैं मोहम्मद यासीन अनजान जी, साथ में शाइमा नवाज हैं, हसन नवाज, और इन्होंने और भी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे हैं और गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी, कहते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर, और कहते हैं कि आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये संदेश हमें पहुँचाते हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी, उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, इनके मित्र भी हैं, इरशाद अंसारी जी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? खुशी मैडम जी तो अच्छी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो श्रोताओं, आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी मैं आपको आकर बताऊँगी कि आज और कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, आज के दिन क्या कुछ खास है, वो सब आपको बताएंगे
थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और एक खूबसूरत गीत का आनंद लीजिएगा। मैं बस अभी आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी वक्त हुआ है 10:56। बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना कीजिए यशुदास जी की खूबसूरत सी आवाज में। और साथियों, म्यूजिक था रविंद्र जैन जी का एंड खूबसूरत सी ये फिल्म और खूबसूरत सा ये गीत आपने एंजॉय किया नया मूवी से। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे एक सवाल तो पूछा ही था, लेकिन मैंने आपसे कहा भी था आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं

उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानकारी मिलना। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जानकारियाँ होना भी बहुत ही ज़रूरी है श्रोताओं। और दोस्तों, आज का दिन मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। 14 मई 1996 ये वो दिन था जब दुनिया में पहली बार चेचक का टीका लगाया गया था। एक वैज्ञानिक की सोच और खोज ने आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने का रास्ता खोल दिया। उस समय चेचक एक बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी श्रोताओं, जिसे हजारों लोग अपनी जान गवा देते थे। लेकिन वैक्सीन की खोज ने दुनिया को उम्मीद दी, सुरक्षा दी और एक नई शुरुआत दी। श्रोताओं, वैक्सीन सिर्फ एक दवा नहीं होती, ये हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा कवच होती है। समय समय पर लगवाने वाले टीके हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के टीकाकरण को कभी नज़रअंदाज ना करें और खुद भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है एवरीवन। एंड सुरक्षित समाज बनाने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं और स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि श्रोताओं, जिंदगी अनमोल है और जिंदगी खूबसूरत भी तभी बनेगी जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। और आज और एक बहुत ही कहते हैं कि वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय भक्ति के प्रति महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज जी की आज जयंती सेलिब्रेट की जाती है, जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती पर हम उन्हें शशत नमन करते हैं। उन्होंने अपने धर्म, देश और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। संभाजी महाराज जी सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि साहस, त्याग और संकल्प की मिसाल थे। उनका जीवन साथियों हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सच्चाई, साहस और अपने संस्कारों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संभाजी महाराज जी की जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपके जो यहाँ पर संदेश आए हैं श्रोताओं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर संदेश आया है कश्मीर से, ये संदेश हमें पहुँचाते हैं महराजुद्दीन जी। कहते हैं, आरजे खुशी जी को हमारा गुड मॉर्निंग, और बताइएगा कैसे हैं आप। हम आपको बताएं, सब बहुत ही अच्छे हैं। और हम और ज़्यादा कब खुश होते हैं बताएं आपको, बताते हैं, जब अलग अलग राज्य से, अलग अलग सिटी से हमारे पास हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने संदेश पहुँचाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है एंड ये रिश्ता दिल से दिल का है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हम आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा यहाँ पर ये कहते हैं, इन्होंने एक संदेश यहाँ पर पहुँचाया है कि जो मैडम से आनंद सर की बातचीत हुई, दर्द से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हमें डॉक्टर साहब से मिली, बहुत ही अच्छा लगा सर की बातचीत सुनकर, थैंक यू सो मच। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। सर अपना नाम भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर। अगला संदेश हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज हमारे पास आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी जी, दुर्गेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। और भी लगातार आप सभी के संदेश बैक टू बैक आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे श्रोताओं। एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ बातचीत करेंगे। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी काम में व्यस्त हैं आप, थोड़ा सा समय निकालिए और हमें अपना दिल का हाल बताइए, अपने संदेश पहुँचाइए। कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

क्या बात ही दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना दिलजीत दोसांझ की, दिलजीत दोसांझ की खूबसूरत सी आवाज़ में। और आज दिन गुरुवार का है तो हमने कहा चलिए इस खूबसूरत से गीत को अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं और थोड़ा सा उनको भी झुमाते हैं। क्योंकि देखिए अब आप अभी शॉप पर बैठे हैं, तो शॉप पर बैठे बैठे मैंने कहा अभी हमारे जो श्रोता हैं वो सोच रहे हैं कि क्या करें, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा गाना प्ले करते हैं जिस पर सभी झूम लेते हैं। थोड़ा सा ही सही लेकिन अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिल जाता है। और श्रोताओं मैं आपके साथ आपकी खुशी, और मैंने आपसे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा था, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था मेरा। श्रोताओं आप मुझे बताइए, क्या कभी किसी की छोटी सी अच्छी अच्छाई या शालीनता ने आपका दिल जीत लिया? बताइए हमें कौन सी वो ऐसी बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना एवरीवन कि जैसे हम किसी की छोटी सी हेल्प करते हैं और वो मुस्कुराकर बदले में हमें थैंक यू कहते हैं, या फिर हम किसी की हेल्प करते हैं तो कोई हमें प्यार से थैंक यू बोलता है। चाहे जैसे कभी चिलचिलाती गर्मी में कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं, कहीं जाना होता है और सामने वाले के पास पानी की बॉटल नहीं होती है, तो वो आपसे पानी की हेल्प लेते हैं कि पानी की बॉटल मिल जाएगी, थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाएगा, तब आप उनको वो बॉटल अपनी देते हैं, वो पानी पीने के लिए देते हैं। तो उसमें जब वो प्यार से अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी पीते हैं, और आपको भी सुकून मिलता है, उनको भी सुकून मिल जाता है, और जब वो बदले में मुस्कुराकर आपको थैंक यू कहते हैं तो कितना खूबसूरत होता है ना वो मोमेंट, वो पल। और श्रोताओं मैं आपसे कहती हूँ कि इस गर्मी में अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है आपको, तो अपनी पानी की बॉटल हमेशा साथ रखें और बीच बीच में पानी पीते रहें। प्यास का इंतज़ार ना करें कि प्यास लगेगी तभी हम पानी पिएं, आप बीच में पानी पीते रहें, जो कि क्योंकि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी के लिए हेल्दी रहना और पानी पीते रहना। एंड यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आप सभी की जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और ये मैसेज हमारे पास काव्या का आया है, न्यू मुरादाबाद से। कहती हैं मैम, ये कहती काव्या मैम कहती हैं कि गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और आज आपका सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सा है, और मैं इसी सवाल पर कुछ कहना चाहती हूँ कि कभी कभी किसी की छोटी सी अच्छाई भी दिल को बहुत सुकून, गहराई से दिल को छू लेती है और सुकून दी जाती है। जैसे बिना वजह किसी का मुस्कुरा देना, मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ा देना, या फिर बस प्यार से हालचाल पूछ लेना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये छोटी छोटी बातें इंसानियत को ज़िंदा रखती हैं। और मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारा बेवजह हालचाल पूछ लेता है, एंड जब कोई किसी को देखकर हम जानते भी नहीं लेकिन बस एक प्यारी सी स्माइल हम देते हैं, सामने से वो भी मुस्कुराते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दिव्या जी का, और ये विकास नगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। कहती हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपका कार्यक्रम हम सुनते हैं एफ एम मुरादाबाद, बहुत ही अच्छा लगता है, जितने भी एफ एम मुरादाबाद पर शोज आते हैं बहुत ही यू नो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जानकारियाँ होती हैं सेहत से जुड़ी, करियर से जुड़ी, एंड उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता है, और आपका शो भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कहती हैं कि मेरे लिए मैम शालीनता का मतलब है किसी की भावनाओं की इज्जत करना। कई बार लोग बड़े बड़े तोहफे नहीं बल्कि मीठे शब्द और सम्मान भरा व्यवहार याद रखते हैं, तो इसीलिए किसी के साथ भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा व्यवहार बनाइए कि वो हमेशा आपको याद रखें। आपके शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, और आप जब भी बोलें अच्छा बोलें। एग्जैक्टली राइट, मैं भी वही कहती हूँ कि श्रोताओं आपको इतनी खूबसूरत सी वाणी प्रभु ने दी है तो उसका यूटिलाइज कीजिए। अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो अच्छा कहिए, किसी को गलत बोलकर क्या फायदा है, किसी को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रोहित जी का, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं प्रकाश नगर से। कहते हैं खुशी जी को हमारा नमस्कार, जय श्री राम, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। और ये कहते हैं कि एक बार सफ़र में एक अनजान इंसान ने सिर्फ इतनी सी मदद कर दी थी कि आज तक उनकी अच्छाई याद है। तब महसूस हुआ कि अच्छे लोग आज भी इस दुनिया को खूबसूरत बनाए हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं इंसान दोस्तों, इंसानियत सबसे खूबसूरत है, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए आपको अच्छा इंसान बनना, अच्छा व्यवहार रखना बहुत ही ज़रूरी है, और ज़िंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बदले में आपको भी वही मिलता है।
बाकी आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइए एवरीवन, हमें बेसब्री से इंतजार है। और देखिए, जो घर में आप काम कर रही हैं मैम, हम आप ही से कह रहे हैं, हाँ जी, आप ना काम करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, माना कि आप खाना बनाने में व्यस्त हैं, अभी किचन में हैं और दाल में तड़का लगा रही हैं, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक फटाक से खूबसूरत सा मैसेज पहुंचाओ बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बस लौट कर आती है खुशी एक खूबसूरत से गीत के उस पार, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम एक आपको एक प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और हम भी आपको जो वादा कर रहे हैं तो वो निभाएंगे, अभी लौट कर आएंगे इन खूबसूरत गानों के इस पार। लेकिन श्रोताओं, आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप भी अपना संदेश हमें पहुंचाएंगे, ठीक है? वादा किया आपने, चलिए थैंक यू, पर इस वादे को ना निभाइएगा भी, और ये प्यारा से गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर्स
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस, नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात आप सभी का। अगेन वेलकम वेलकम करती है आरजी खुशी आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, देखिए अभी हम आपके स्वास्थ्य की बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। और ऐसी ही एक बेहतरीन शुरुआत है सुबह की हल्की धूप लेना। जी हाँ साथियों, सुबह की धूप हमारे शरीर को विटामिन डी देती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ ही यह हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने, शरीर को एक्टिव रखने और कमज़ोरी दूर करने में भी मदद करती है। इतना ही नहीं, सुबह की धूप से शरीर में जो हमें विटामिन डी मिलता है श्रोता, वो हमें भरपूर एनर्जी भी देता है और जिससे मन खुश रहता है, तनाव कम होता है और नींद भी बेहतर आती है। तो कोशिश कीजिए कि रोज सुबह 15 से 20 मिनट हल्की धूप लेना ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठें और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक, ताज़ी हवा और सूरज की किरणें आपके तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, सुबह सुबह जो आलस करते हैं उठने में, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें, विटामिन डी लें और वॉक करें, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें, क्योंकि यही हमारा अनमोल कहते हैं ना कि धन है। और अगर आपके पास देखिए बहुत पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास आपका स्वास्थ्य ही स्वस्थ नहीं है, तो आप क्या उनका आनंद ले पाएंगे, उन चीज़ों का नहीं ले पाएंगे ना। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड सुबह जल्दी उठें और ज़्यादा लेट नाइट ना सोएं। आप जल्दी सोने की कोशिश करें, माना कि काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन काम को भी कीजिए, लेकिन समय पर भी ज़रूर सोइए, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए एवरीवन। और सुबह जल्दी उठें, देखिए ना सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है। जो हमारे श्रोता सुबह सुबह उठते हैं वो जानते हैं, उस चीज़ को महसूस भी करते हैं, एंड जो लेट उठते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो लेट उठते हैं, जो जल्दी उठते हैं उनको तो हम सल्यूट करते हैं कि आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, उनको भी जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं बिना किसी देरी के। एंड यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं शाबरीन खान जी रहमत नगर मुरादाबाद से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसी हैं? मैम आप बहुत अच्छे प्रोग्राम प्रेजेंट करती हैं, बहुत अच्छे से प्रोग्राम को प्रेजेंट करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। आप और आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम सभी को नई नई जानकारियाँ, नई नई ज़रूरी जानकारियाँ देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम डियर। हमारा फ़र्ज़ है ना आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, आपको छोटी छोटी खुशियाँ देना, और जब आप सब खुश रहते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद, इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम फिट एंड फाइन, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और कहते हैं कि आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छी प्ले करती हैं, थैंक यू जी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, कहते हैं ये आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी। जिला मुरादाबाद ग्राम दूला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का मैसेज हमारे पास आया हुआ है और कहते हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा, हम एफएम मुरादाबाद के प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जी। एंड और भी मैसेज यहाँ पर लगातार आप सभी के आ रहे हैं एवरीवन, हम उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आपसे, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे अभी हमें शेयर करनी है। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए, और खुशी आपसे कहती है दिल से मुस्कुराइए।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी यहाँ पर समय हुआ है 11:31 और 41 यहाँ पर हुआ है अभी वक्त। एंड अभी हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर जब बात जुनून, मेहनत और रिकॉर्ड्स की हो तो एक ही नाम अपने आप दिल और जुबान पर आ जाता है, विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, IPL 2026 में किंग कोहली ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उन्हें रिकॉर्ड्स का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। रायपुर के मैदान पर कोलकाता नाइट राइड्स के खिलाफ शानदार शतक लगाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को मजबूती दी बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। लगातार दो मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जिस तरह विराट जी ने वापसी की, वो हर इंसान को ये सीख देती है कि असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर फिर उठना जानता हो। 14,000 T20 रन IPL में ऐतिहासिक उपलब्धियां और हर सीजन में खुद को बेहतर साबित करने का जुनून, यही वजह है कि करोड़ों दिल आज भी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, किंग कोहली इज ऑलवेज किंग। और अब वक्त है उस खूबसूरत एक एनर्जेटिक ट्रैक की जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और अभी यहाँ पर कुछ और संदेश भी आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये संदेश बड़ा ही खूबसूरत सा आया है। और दोस्तों कहते हैं ना कि हर दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है, और एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर संदेश आया हुआ है। ये मैसेज हमारे पास आया है अजीत कसाना जी का और साथ में माया देवी जी का। एंड आज सर की शादी की सालगिरह है और 14 मई 1997 को ये सफ़र इनका शुरू हुआ। खूबसूरत सा रिश्ता आज भी उतने ही मजबूत प्यार और विश्वास से भरा हुआ है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि आप दोनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे, जीवन में खुशियां, प्यार और अपनापन कभी कम ना हो, हर नया दिन आपके रिश्ते में नई मिठास लेकर आए। और हमारी पूरी की टीम की ओर से आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। और इनकी फैमिली भी, इन्होंने अपनी फैमिली के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं, ऋतिक और आदित्य कसाना जी का। ये संदेश हमें पहुँचाते हैं ग्राम पोस्ट लदावली से, और इन्होंने एक खूबसूरत सा गीत आज के स्पेशल डे पर डेडिकेट करते हैं। और एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है। हेलो खुशी मैम, हाई शाबरीन का मैसेज हमारे पास मिलक से आया है। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है सबीना खान जी का रहमत नगर मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच सबीना जी, आपने इतना खूबसूरत सा संदेश हमें पहुंचाया है। एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, और ये संदेश हमें पहुंचाया है उत्तराखंड धनोरी तिलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया यान बाबू जी का मैसेज हमारे पास आया है। और ये कहते हैं खुशी मैम को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। एंड अगला मैसेज हमें मिला है जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का, साथ में इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत, गुरु शब्द सिंह राहुल जी का। और ये हमें नमस्कार पहुंचाते हैं, आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो चलिए एक और मैसेज यहाँ आया है, उसको कैसे हम मिस कर सकते हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से, कहते हैं आरजे खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे संदेश आप हमें पहुंचाते हैं ना, हमारा दिल को आप जीत लेते हैं। क्या मैं भी आपके दिल को जीत पाती हूँ? हाँ जीत लेती हूँ ना। देखिए ये तो आप ही मुझे बता पाएंगे साथियों, उसके लिए आपको हमें फटाफट से संदेश पहुंचाना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस नंबर पर आपको क्या करना है, अपना मैसेज पहुंचाना है। जी हाँ, बिना किसी देरी के आप जल्दी से संदेश पहुंचाइएगा, हमें इंतज़ार है। और अभी हम आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक बिना किसी देरी के, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं और भी करेंगे आपसे बातें। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए। खुशी आपसे अगेन कहती है दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और ये प्यारा सा गीत सुनते जाइए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: रंजीत जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत सुना, टाइटल ट्रैक भाग मिल्खा। और दोस्तों, फरहान अख्तर की खूबसूरत सी ये प्यारी सी आवाज़ में ट्रैक आपने सुना, सिद्धार्थ महादेवन जी की खूबसूरत सी आवाज़ में ये आपने ट्रैक इंजॉय किया। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी जाने का भी वक्त हो गया है और बस आज की मुलाकात यहीं तक थी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी भी भाग मिल्खा भाग की तरह है, रुकने वालों के लिए नहीं, हर हाल में आगे बढ़ने वालों के लिए होती है। अगर सपने बड़े हैं तो हौसले भी बड़े रखिए, क्योंकि मेहनत की दौड़ में देर हो सकती है लेकिन जीत ज़रूर मिलती है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अब आरजी खुशी आपसे लेती है जाने की अनुमति, मिलूंगी मैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नई बातों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और अपना अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और श्रोताओं, मैं जाते जाते ये भी कहना चाहती हूँ आप सभी से कि पक्षियों के लिए भी, जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखिए। उनके खाने पीने के लिए भी आप जो उनकी चीज़ें हैं उनके लिए रखिए, कुछ दाना पानी भर कर रखिएगा। जब आपकी बालकनी में, आपके घर के बाहर कुछ डॉग्स भी हैं जो जाते हैं, अभी कुछ पशु भी हैं जो रोड पर रहते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं पानी की तलाश होती है, तो आप भी अपने घर के बाहर एक बड़े बर्तन में पानी रख सकते हैं जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। एवरीवन, तो सबका साथ दीजिए, सबका ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार श्रोताओं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
0: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
1: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
0: भावी पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
1: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
0: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
1: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
0: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
0: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
0: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
1: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
1: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दें तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
0: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
1: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
1: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
0: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
1: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
0: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
1: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गाँव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र क्रिया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
1: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
0: और डिजिटलकरण क्या होता है?
1: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
0: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
0: दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
0: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
7: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजी रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
7: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए आर्जेरीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
7: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्ट्रेंथ विद साइंस, और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
7: भाभी ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
7: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के 100 झंडे से चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाएं और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
7: भाभी आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
7: भाभी ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
7: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
7: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियाँ फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं।
7: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन चुनौतियाँ अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारियाँ भारत में बहुत ज्यादा हैं और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
7: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहाँ मुफ्त जाँच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है, लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने

0: के लिए प्रेरित करना।
1: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
0: सबसे अहम भूमिका होती है, हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है, बहुत सी दवाइयां मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहां अच्छे डॉक्टर, दवाइयां और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
1: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
0: आरजे रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे या

0: दवाइयाँ देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
1: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
0: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ समय पर नहीं पहुँचती, यहाँ जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन भरोसा करने की जरूरत है।
1: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
0: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
1: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
0: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
1: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
0: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
1: तो इन बातों का सच क्या है?
0: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंधे मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें उसे सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
1: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सके?
0: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
1: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपनों के लिए,

0: अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ गई, और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है और कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जा। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक

0: क्या उनका दावा बड़ी अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनकी शब्द क्यों हमारी घर का फैसला करे?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक: HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य: उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता। पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक: HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य: आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक: अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य: समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक: मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य: मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
2: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
0: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
2: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
0: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
1: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
2: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
1: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
2: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देही की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
2: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
1: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य पनप ही नहीं सकती।

0: और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
0: और खासकर बेटियों के मामले में हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी हो।
2: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
0: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और सामुदायिक का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर, इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
0: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचे।
2: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
0: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
2: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है, मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। पर वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है आसान है, बहुत ईजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग,
0: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा।
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, a new thing, something new thing is.
0: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
0: हाँ जी मैम,
1: वो अक्यूट में आता है।
0: ओके।
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का दर्द, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
0: ओके।
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं, वो हम करते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
1: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल। तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द।
0: ओके।
1: ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, फिर आता है हमारी बोन। बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया। डिस्क का पीछे की तरफ जाना, जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है। थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
0: ओके मैम, ये तो हमने बात के लिए सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
1: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले डेशन कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा, हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे, कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है, कैनाल डायमीटर। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया। आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोग के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना, वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
0: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
1: बिल्कुल भी नहीं है।
0: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
1: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा। तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं। जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं। तो ये इसका इलाज है।
0: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
1: बिल्कुल,
0: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार, मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
1: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है, तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
0: जी।
1: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई, वो सर मेरे दिमाग पे आओ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको। क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है, बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है, तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं, वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है, जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
0: जी जी
1: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है। पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है, तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
0: ओके
1: ऐसे
0: ओके मैम। सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल

0: का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
1: डेफिनेटली,
0: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं? मैम
1: बिल्कुल, क्या होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, तो लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेन जी है, जेन अल्फा है,
0: बीटा है,
1: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है,
0: करेक्ट,
1: तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को, अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: Exactly.
1: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल मैम,
1: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर, ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
0: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
1: बीच में भी हम देखते हैं,
0: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है,
1: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
0: करेक्ट, तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
1: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है, अगर और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन, सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीक से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर, और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं। माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
0: काम पे
1: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी, वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है,
0: करेक्ट,
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहा है, दैट इज प्योरली ओके,
0: ठीक है।
1: कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं,
0: exactly.
1: कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट
0: कर लिया,
1: तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है,
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
0: तो मतलब ऐसे
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
0: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेनुइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: ओके,
1: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है, तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
0: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: मतलब कोई और, फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
0: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है।
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
0: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
0: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
1: बिल्कुल है,
0: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
1: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
0: ठीक है,
1: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
0: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली? क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन, आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है. आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन.
0: ठीक है
1: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ. तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है, या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि तीन महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है.
0: ठीक है. ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच. तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
1: देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें. अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा.
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ.
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है
0: मैम. एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
1: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते हैं ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं.
0: बिल्कुल मैम सही बोला. इनफैक्ट मैम मुझे ऐसे लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है.
1: बिल्कुल.
0: तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
1: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है.
0: बिल्कुल.
1: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
0: फोन,
1: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता. या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो चॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है.
0: ओके.
1: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं.
0: ओके. सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से. थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच. मैम कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल. स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं.
1: बिल्कुल. दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें.
0: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
1: AI
0: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए. तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा.
1: नहीं सर दर्द, देखिए गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा.
0: बिल्कुल.
1: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है. तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट. अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ.
0: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा. और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6. अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत. मैम थैंक यू सो मच. और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं. बाय बाय.

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
0: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: समझदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं। आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह, खीर
0: बहुत
1: तो?
0: पसंद है मेरी मम्मी को सच में।
1: हाँ,
0: हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूजे, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
2: कॉल 8826213131। डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
6: हेलो नमस्ते आदाब, रेडियो एफएम मुरादाबाद से मैं हूं आपकी दोस्त छाया, वेलकम करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों आज की तारीख है 8 जून, और इस दिन को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
7: नमस्कार
6: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
7: मैं डॉक्टर मोनीत अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशंस में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
6: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है।
7: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है वो।
6: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
7: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
6: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
7: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
6: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
7: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप समझें कि पूरा हमारा शरीर जो है वो, हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है। अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो कितना खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
6: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, बस ऐसी हमारी कोशिश है, और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर
1: ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं।
7: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्दल हाँ टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
1: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
7: जैसे मैंने बताया मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे।
7: देखिए इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है, आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टियां आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है, इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर से भी देखते हैं और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
1: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
7: देखिए ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज, रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है, जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
1: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है।
7: देखिए सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचे हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है, जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
1: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं।
7: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: और सर इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
7: मैं अपनी जनता को कहना चाहूँगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिख रहा कुछ काम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है। और आप समझिए बहुत खतरनाक बीमारी है, जो 28,000 लोग साल के इससे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतने जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
1: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके। एफएम मुरादाबाद की टीम आपका दिल से अभिवादन करती है कि आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के दिन आप
8: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
9: टायर लो सोना जीतो।
10: क्या?
9: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
11: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
12: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
13: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
12: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
13: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
14: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
15: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है।

0: आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
0: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
5: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
0: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

0: नमस्कार, आदाब। मैं आपकी रेडियो दोस्त छाया। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी और योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। जी हाँ, आज हम योग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रितु नारंग जी, जो एक योगा टीचर हैं। मैम, आपका मोस्ट वेलकम हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम रितु नारंग है और मेरे पिता योग गुरु के नाम से इलाहाबाद में जाने जाते थे और बचपन से ही हमने योग उनके द्वारा देखा है। इनफैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी योगा कराते थे वो, और उसके बारे में महत्व के बारे में बचपन से जाना। लेकिन 2009 में जब मैंने श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा और वहीं से मेरा एक प्रॉपर वे में एक सही दिशा में योगा के बारे में जानकारी होते हुए उसको आज मैंने अपने जीवन का एक मूल आधार बनाया और उसी के द्वारा आज मैं पूरे मुरादाबाद के आसपास क्षेत्रों में भी और जब कोरोना आया था ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन योगा लिया था। और इसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर हूँ, नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ, पुलिस में योगा ट्रेनर के नाम से जानी जाती हूँ और अपने हिंदुस्तान के 7 लोगों में जब कोरोना हुआ था तो चुना गया था तो साउथ में श्री सत्य साई भागा भगवान इंस्टीट्यूट में मुझे अवार्ड मिला था। इसी प्रकार मिशन शक्ति और साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट आइकॉन रही हूँ 19 और 22 में, और अपना स्वीप के लिए इलेक्शंस के लिए, जैसे स्वीप का मतलब होता है इलेक्शंस, 2017 में थे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्वच्छ भारत अभियान के। इसी प्रकार से जर्नी रही और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है।
0: जी, खूबसूरत जर्नी तो आपके बातों से और ये जान के हमें लगी रहा है। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, योगा क्या है, क्यों करना चाहिए इसे?
1: देखिए, योग के बारे में अगर हम किताबों में और गूगल में बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक दिनचर्या और योग है क्या, एक्चुअली में एक लाइफस्टाइल है वो। योग एक पथ है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। योग एक ऐसा जीवन शैली है, अगर उसे हम उतारते हैं अपने जीवन में, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक फूल है, फूल की तरह रोज हमारी एक कली खिलती है ना, उसकी पंखुड़ियां खिलना शुरू हो जाती हैं। वैसे जब हम योग करते हैं तो ऐसे हमारा जीवन भी एक फूल की तरह रोज खिलता है और खुशबू फैलाता है जहाँ

0: भी हम चाहते हैं। हाँ, अगर आप उसको वैसे जानना चाहेंगे तो योग एक जोड़ना है, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन योग को जोड़ना किसका, क्यों और कहाँ, ये समझना जरूरी है। योग सिर्फ आसन या अपने शरीर को ही नहीं, योग बाहरी दुनिया से अंदरूनी दुनिया को जोड़ना योग कहलाता है। स्वयं के संघा में रहना, और मैं एक लाइन जरूर बोलती हूँ, खुद से मोहब्बत करना। खुद से मोहब्बत करिए तो अपने आप योग आप करेंगे। खुद से मोहब्बत करना, खुद से मिलना, खुद को जानना योग है। योग, मैं फिर कहूंगी, एक जीवन शैली, कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कैसे अपने आप को हम समाज में, और कैसे अपने आप को अपने परिवार में, कैसे अपने आप को अपने कार्य में जोड़ते हैं, कितनी खूबसूरती से जीते हैं, वो हम योग के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी जीवन शैली को खूबसूरत बना सकते हैं।
1: क्या बात है, मतलब आपने पूरे योग की परिभाषा दे दी हमारे श्रोताओं को, और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मैम, आपने एक लाइन कहा कि खुद से मोहब्बत करिए। जरूर खुद से मोहब्बत हर कोई करता है, और आजकल के टाइम में हर कोई फिट रहना चाहता है। तो मुझे ये बताइए कि फिट रहने के लिए आजकल का जो यूथ है, वो सबसे ज्यादा अगर भागता है तो जिम की तरफ भागता है। जिम और योगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताइए।
0: जैसे अभी आपने बोला, योग खुद से मोहब्बत
1: जी,
0: ये मैंने क्यों बोला, आज हमारे हिंदुस्तान का ये ज्ञान है, योग जो है हमारे जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 6-7 हजार साल पहले हमें दिया। जिम जो है पाश्चात्य है। आज आप देखिए, 21 जून जब से हिंदुस्तान ने विश्व को दिया, आज वहाँ पर विदेश में जिम बंद हो रहे हैं और योगा स्टूडियोस खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है योग से जो प्राप्त होता है वो जिम से प्राप्त नहीं होता है। जिम एग्रेशन है, योग शांति है। जिम स्वयं को भगाना है, स्वयं के साथ एक कुश्ती लड़ना है, और योग जो है खुद से मोहब्बत है, खुद से साथ प्रेम है, खुद के साथ बैठ के अपने आप को पैम्परिंग करना। कहते हैं ना, आओ खुद के लिए कुछ करें, आओ खुद को कुछ जाने, योग वो है। आज विश्व को, हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने योग दिया है, वो ज्ञान दिया है जो एक साइंस है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। योग एक विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक सोने की थाल में सजा के दिया है। आज मैं युवाओं से जरूर कहूंगी, स्वयं के अगर आप शांत रखना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिम को छोड़ो और योग को अपनी जीवन शैली में अपनाओ। योग जो है और जिम जो है, उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आप जब इस दोनों को करेंगे तो आप इसका अनुभव अपने आप, इसको आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, आप उसे बहुत ही सुंदर तरीके से अनुभव भी करेंगे।
1: क्या बात है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें जिम और योग दोनों से क्या मिलने वाला है। अभी आपने कहा कि अपने आप को शांत रखने का एक सही तरीका है योग। अगर इसी को लेके आगे हम बात करें तो आजकल के बच्चों से लेके युवाओं में गुस्सा बहुत आता है, हमेशा हर बात में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या योग से इस चीज को भी दूर किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, शत प्रतिशत। इसके अलावा कोई और जरिया भी नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने पूछा मुझसे कि जिम और योग में क्या फर्क है। जिम में मैंने कहा एग्रेशन है
1: जी,
0: और योग में प्रेम है।
1: प्रेम है।
0: जब हम योग करते हैं, हम बहुत शांत हो जाते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारा गुस्सा अपने से लुप्त हो जाता है। इसीलिए आज युवा ही नहीं, बच्चों से ही हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए। आज स्कूलों में भी योग का पूरा आप देखिए ध्यान दिया जाता है, कि योग बच्चों को स्कूल में कराया जाता है। आज इसीलिए युवाओं को भी प्रोत्साहित करा जाता है कि आओ योग करो, क्योंकि जो आज 21वीं सदी की मिलेनियम में जो आपका सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, कि आज गुस्सा, आज धैर्य आप देखिए बिल्कुल लुप्त हो चुका है। इसलिए झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए तो रेशियो ऑफ डाइवोर्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो सब इसीलिए है कि हमारी मानसिक संतुलन हमारा ठीक नहीं चल रहा है, अहम हमारे जीवन के अंदर आ चुका है, और हम दोस्त के बदले हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके आ गए हैं। और जब हम योग करते हैं ना, हम फिर से कहेंगे खुद से मोहब्बत करेंगे। जब खुद से मोहब्बत करेंगे, एक लाइन आई डाउन करेंगे आप, जब खुद से मोहब्बत करेंगे ना, जो आपके आसपास है ना, उससे आप स्वयं मोहब्बत कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आप जब खुद से मोहब्बत करेंगे तो आपसे प्रेम बहेगा, जब प्रेम आपसे बहेगा तो नेचुरल है आप समझ जाएंगे सामने वाला भी आपसे क्या चाह रहा है।
1: क्या बात है, मतलब खुद से मोहब्बत करिए बार बार। मैम अपने शब्दों में इस सेंटेंस का यूज कर रही हैं। वैसे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं वो प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है योग करने से। तो योग करिए, मन को शांत रखिए, एक सही जरिया है योग हमारे मन को शांत रखने का। अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आयुष मंत्रालय का भी ये कहना है कि योग करिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और हर तरह के बीमारियों से निजात पाइए, ये कितना सही है?
0: ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, सत्य है। इनफैक्ट जो आयुष मंत्रालय जी इस बात का दावा करता है, आयुष मंत्रालय की बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है योग के द्वारा, ये सही बात है। हम बहुत सारे पैसे अपने एलोपैथिक दवाइयों में बर्बाद करते हैं। कहते हैं ना, दवाई खाना आसान है लेकिन खुद से प्यार करना मुश्किल है। आप लोग मुस्कुराएंगे कि फिर से रितु दीदी ने ये कह दिया, मुझे बहुत प्यार से लोग रितु दीदी कहते हैं मुरादाबाद में।
1: अच्छा,
0: तो ये बात सही है क्योंकि मेरा अनुभव है, 2009 से 2023 हो गया है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए व्यक्ति आए ना हो शिवर करने मेरे पास। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स जैसी बीमारियों के भी आए थे और जब वो पहली बार आए वो खुद डॉक्टर भी थे और उनको जब मैंने पूछा कि आप कैंसर पेशेंट हैं और आप योग करने आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद डॉक्टर ने, दिल्ली के डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि जाइए और योग करिए। आज एम्स में डॉक्टर्स खुद इस बात को कहते हैं कि जाओ और योग करो। क्यों? क्योंकि योग से हमारी विल पावर हाई होती है। बहुत साइंटिफिक चीज है, बहुत वैज्ञानिक चीज है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। मैंने आपसे पहले कहा कि योग एक बहुत बड़ा साइंस है जिसके बारे में जब हम समझेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा विश्व में जो अपनी सुबह की शुरुआत बिना योग के करेगा। क्योंकि योग जो है हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है तो आधी बीमारियां तो हमारी वहीं से खत्म हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रात को नहीं सोना, इंसोम्निया जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब जितनी चीजें हैं, बच्चों को आजकल बहुत बड़ी परेशानी, बैठे बैठे रोना शुरू हो जाता है उनका, वो कहते हैं डिप्रेशन में। बचपन से ही बच्चा दवाई डिप्रेशन जब खाएगा तो आप ये सोचिए उसके शरीर के अंदर और क्या क्या होगा। और ये बात कही गई है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ योग है, इसलिए क्योंकि योग में आप फिर मुस्कुराएंगे, प्यार करते हो आप अपने आप से। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें अकेलापन लगता है, हम दूसरों से, हमें अपेक्षाएं हमारी होती हैं, वो चीज जब हमारी पूरी नहीं होती हम सोचते हमारे लिए कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और यहाँ तक कि स्तर बढ़ जाता है कि हम सुसाइड करने की तरफ भी चले जाते हैं। आज आप देखिए सुसाइड रेट भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है,
1: बहुत बढ़ गया है।
0: तो ये सब पीछे क्या है? डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल है सुसाइड, अकेलेपन का एक्सट्रीम लेवल है, गुस्से का एक्सट्रीम लेवल है। कई बार पति पत्नी में या घर में माँ बाप से झगड़ा होता है, बच्चा इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे पता ही चलता है वो सुसाइड कर लेता है, या पति पत्नी में इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि पत्नी जाकर सुसाइड कर लेती है या पति सुसाइड कर लेता है। आज हर तरीके से आप देखिए क्यों है ये, क्योंकि हम कभी शांत मन से बैठते नहीं है। सुबह की शुरुआत अगर शांत मन से हम करते हैं तो हमारी परेशानियां, बीमारियां पहले ही खत्म हो जाती हैं। जहां तक बीमारी की बात है, मैं अपने अनुभव से आपसे कहती हूँ, कितने लोगों की बीपी की दवाइयां छूट चुकी हैं, मुरादाबाद में शुगर की मेडिसिन छूट चुकी हैं, थायराइड के पेशेंट्स आ चुके हैं, एस्थमिक पेशेंट्स आ चुके हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आ चुके हैं, टीवी के पेशेंट्स आ चुके हैं, कैंसर पेशेंट्स आ चुके हैं। आप मुझसे पूछोगे शरीर के दर्दों के आ चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि जो स्ट्रेस है उससे भी पेन होती है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल नहीं है ज्यादा हाई तो आप उसको भी खत्म कर सकते हो, अपनी पेन को भी खत्म कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रेस अपने लाइफ से खत्म कर दोगे तो। आज जो ये तनाव है वो भी बीमारियों का कारण बन रहा है, और ये सब चीजें हमें कहाँ से फ्रीडम मिल सकती है? योग से। सिंपल, योग करिए, निरोगी काया पाइए, बहुत पुरानी सेइंग है, योग करो निरोगी काया पाओ, सुबह उठो सांसें भरो, योगा करो, मस्त रहो।
1: क्या बात है मैम, आपने कई बार इस चीज को मेंशन किया है कि योग, सुबह उठो योग करो, सुबह उठो योग करो, कि योग करने का जो सही समय है क्या वो सुबह में ही है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं, अदर वर्क पे जाते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। अगर वो योग फॉलो करना चाह रहे तो वो किस टाइम कर सकते हैं?
0: देखो, योग का समय जो अगर आप पढ़ेंगे हर जगह, चाहे गूगल में पढ़ लीजिए या पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए या आप किसी योगाचार्य से सुनेंगे, तो आपको यही बोला जाएगा, चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी से सुने, चाहे आप रामदेव जी से सुने, चाहे सदगुरु जी से सुने, आप किसी भी से भी सुनेंगे ना, तो वो यही कहेगा सुबह उत्तम समय है। लेकिन योग करना जरूर चाहिए। अगर आप लेट हो रहे हैं, शाम को करो। जैसे हम बच्चों का शिविर लेते हैं, अभी मेरा 15 दिन से लगातार चल रहा था, 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों का। तो उनका मैंने जो समय रखा कि बच्चे छुट्टियां हैं, वो चाहते हैं हम आराम से उठे, राइट? तो उनका टाइम जो रखा था, वो रखा ही हमने 11 बजे था। 11 से 1-2 घंटा मस्त होके योग करो, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। आप एक नींव डाल रहे हो बच्चों में योग की। आप जा रहे हो कॉर्पोरेट हाउस में काम करने जा रहे हो, आप सुबह सुबह भागा दौड़ी में आप लेट उठ रहे हो, लेकिन आधा घंटा उठ जाओ पहले, अच्छा है। लेकिन अगर नहीं उठ पाए, लेट हो गए किसी कारणवश, तो शाम को कर लो। लेकिन खुद को 24 घंटे में से आधा घंटा जरूर दो, जरूर दो। खुद से प्यार अपने से आधा घंटा करो। दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन खुद से भी तो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। 24 घंटे में से आधा घंटा स्वयं को जब देंगे, बीमारियों से भी फ्रीडम पाएंगे, जो आयुष मंत्रालय कहते हैं, जो सारे योग गुरु कहते हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का यह विज्ञान बहुत प्रसिद्ध हो चुका है।
1: मैम, आपने कहा कि आप बच्चों को सिखाती हैं, जैसा कि आप योगा टीचर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितने लोगों को योग के बारे में आपने ट्रेन किया है, उनमें कितना इसका प्रसार हुआ है, कितना जान पाए हैं योग के बारे में वो?
0: बहुत गर्व से कह सकती हूँ, डीएम राकेश सर हमेशा मुझे योग गुरु के नाम से कहते थे। अहमदाबाद में एक तरह से कहा जाता है कि योग के बारे में हमने काफी कुछ इसके बारे में कार्य क्षेत्र करा है। पुलिस में 50,000 मेरे 2019 में पूरे हो गए थे ट्रेनीज में, मैंने योगा कराई थी, यहाँ तक कि योग और ध्यान के साथ, और पब्लिक में कोई गिनती नहीं है। और उन सब का जो बेनिफिट्स है, आप लोग मेरे फेसबुक में जाके देखेंगे, AOL मतलब आर्ट ऑफ लिविंग होता है, वो शॉर्ट फॉर्म है AOL, RITU ऋतु दीदी मुरादाबाद, तो आप उसमें देखेंगे कि हर प्रकार से लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है पढ़ाई, मेमोरी हमारी शार्प होती है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता है, फोकस हमारा बढ़ता है अगर हम योग करते हैं तो। आप सोचिए कितने बेनिफिट्स हैं। आपने अगर अपने आपको सुबह आधा घंटा से एक घंटा दे दिया, तो आपको हर तरीके से, आज कहते ना बहुत जल्दी याद आ जाए, भूल गया, अब आजकल सुनते होंगे अक्सर मुंह से निकलता है, भूल गया, क्यों भूल रहे हैं?
1: मेरे साथ भी हो जाता है इसके बाद मैं योगा फॉलो करने वाली हूँ।
0: यस, ये जो लाइन हम लोग अक्सर, आज युवा भी बोलता है, बच्चा भी बोलता है, याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप योग कर रहे हैं, जो मेरे पास शिविर होते हैं बच्चों के, उसमें स्पेशली इसी पर पूरा ध्यान होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़े, क्योंकि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग के साथ ध्यान में बैठना तभी वो पूर्ण होता है। योग के साथ ध्यान में ही अपने आप को कम्प्लीट करेगा। योग, प्राणायाम और ध्यान, योग इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री थिंग, तीनों का मिलन है। आप योग को सिर्फ एक चार हाथ उठाना या पैर उठाना नहीं है, योग, प्राणायाम और ध्यान, तब वो पूरा योग आपका होता है। तीनों चीजों को आप बराबर बांटिए और फिर आप देखिए उसका क्या रिजल्ट मिलता है। इसीलिए बच्चों को जब हम 2 घंटे का लेते हैं, जैसे आजकल मेरा जो चल रहा है 13 साल से 18 साल के छोटे बच्चों का चल रहा है, तो पूरा उनको योग में योग कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, सुदर्शन क्रिया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की है वो कराई जाती है, और साथ ही साथ उनको पूरा अपने संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसीलिए मेमोरी बच्चों की, याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, मैं स्कूल्स में भी लेती हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स लोग यही कहते हैं, जब ये कोर्स हो जाता है तो बच्चों की रिजल्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए कितने फायदे हैं योग के।
1: जी बिल्कुल। जैसा कि मैम आपने शुरुआत में ही मेंशन किया था कि आप ऑनलाइन योगा भी सिखाती हैं, तो और आपने इस वाले आंसर में ये सारी चीजें मेंशन की है कि तीन चीजें, योगा, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों जब तक आप नहीं करते हैं एक साथ, तब तक आपका योगा कंप्लीट नहीं होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे हर जगह आपको हर तरह के वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, तो हमें ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है तो वो वीडियो से ही कर सकता है या उसे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी?
0: देखो, ये बात बिल्कुल सही है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन शैली में बहुत हावी हो चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। आप कोई भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आज अब यूट्यूब उसके लिए अवेलेबल है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ये तीनों चीजें आज हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि योग का एक प्रॉपर ट्रेनर आपके पास हो, उसके बारे में भी आप स्टडी करिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज हो चुकी

0: पूरा एक प्रचार करा है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है हम लोगों को कि आज हमारे पास नौकरी इस चीज की बहुत होगी, प्रोफेशनली ये बहुत हाई हो चुका है। आजकल के युवा इस चीज को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, घर घर आप देखिए आजकल योगा सिखाने लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें इनकम भी हो रही है। जिसे कहते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इससे आया है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज हमारे हिंदुस्तान की वजह से आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इसमें मिला है, लेकिन उन्होंने स्टडी कितनी करी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या उसने किसी कहीं से एक शिविर अटेंड कर लिया 4 दिन का 5 दिन का 1 महीने का और फिर वो खुद अपना सिखाने लग गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनर से आप सीख रहे हैं वो जरूरी है। यूट्यूब में भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्या वो प्रॉपर ट्रेनर है, क्या उसने सही दिशा में कर रहा है, कैसे है। देखो हर चीज, अगर हम सिंपल सा एक लेडी है, हम दोनों लेडीज बैठे हुए हैं, एक मेकअप भी हमने सीखना है तो हम ऐसे ही नहीं सीख लेंगे यूट्यूब में जाके, है कि नहीं?
1: बिल्कुल,
0: राइट। तो ये तो आपका शरीर है जिसके बिना कुछ भी नहीं है। आज सब कुछ मुझे कौन दे रहा है? शरीर दे रहा है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आपने अगर यूट्यूब में देखना है, बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, लेकिन अपना पढ़ाई पहले पूरी करो। अगर हम मेकअप के बारे में पूरा स्टडी करते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने फेस में, सही कह रहे हैं? नहीं कह रहे?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: जब आप मेकअप को स्टडी करके अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिसको भी अपना योग गुरु, क्योंकि जिससे भी आप सीखेंगे वो आपका योग गुरु बनेगा, तो उसको भी आप पूरा स्टडी करिए और जरूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन लिया है। इनफैक्ट कोरोना में सबसे ज्यादा इसका हाइप हुआ था। अगर कोरोना में अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग सब कनेक्ट ही नहीं होते।
1: बिल्कुल सही कहा। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और ये कंफर्म हो गया कि अगर योग के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हुई किसी को तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि योग करने का तरीका आप गलत अपना सकते हैं। ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी योग फॉलो करना चाह रही है तो उनके लिए कोई ऐसा आसन जो प्रॉपर वो कर सके?
0: बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत बड़ा मिथ है, एक मिथ्या है कि प्रेग्नेंट लेडी को योगा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल की 21st सेंचुरी की जो डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो स्पेशली योगा कराती हैं कि जैसे वेट फालतू का गेन ना हो। हमारे टाइम में तो देखिए इतना ब्लूमा हो जाता था, इतने मोटे ताजे हो जाते थे। आजकल के जैसे ही बेबी होता है वापस शेप आउट हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं बेबी आया कहाँ से, कहाँ गया, क्या हुआ, राइट? जो योगा प्रेग्नेंट लेडीज को कराई जाती है वो उसी उद्देश्य से कराई जाती है कि उनके पूरे शरीर में एक्स्ट्रा मास ना आए। अब उसके प्रॉपर ट्रेंड योगाचार्य होते हैं, उन्हीं से ही आपको करना चाहिए। इसको बहुत एम्फसाइज करके मैं आपको कह रही हूँ। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं जरूर कहूंगी, ध्यान जरूर करिए। आपका बच्चा गुस्से वाला नहीं होगा, रात को बहुत प्यार से सोएगा। आप अगर गुस्सा करेंगे, आपको पता ही है, गीता में आपने सुना ही है, अभिमन्यु ने गर्भ से ही सीखा था चक्रव्यूह को के अंदर जाना, राइट, उसका तोड़ना,
1: है ना?
0: तो उसने निकलना नहीं सीख पाए थे, तो वो उसने कहाँ से वो ज्ञान सीखा था? माँ के गर्भ से। आज अगर माए इस चीज को, योग और ध्यान को अपनी जीवन शैली प्रेगनेंसी में बनाती है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत तीव्र बच्चा आप अपने हिंदुस्तान को देंगी।
1: क्या बात है, मतलब प्रेगनेंसी में योग जरूरी है, जरूर करें। मैम एक दो आसन आप मेंशन कर दीजिए जो महिलाएं कर सके।
0: देखिए जो आसन हैं, हर प्रेगनेंसी का अपना अपना अलग अलग होता है।
1: ओके।
0: हर बॉडी अपनी होती है, तो मैं फिर से आपसे ये बात जरूर कहूंगी, योग का जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, बिना अपने योग इंस्ट्रक्टर और डॉक्टर की कंसल्ट के बिना बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कहूँ कि अभी मैं कोई आसन बता दूं और वो उस लेडी के बॉडी के लिए इम्पैक्ट ना हो, वो ठीक नहीं रहेगा। ध्यान में जरूर फिर से कहूंगी, आप अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, यूट्यूब में श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में बहुत हिंदी इंग्लिश हर प्रकार के ध्यान है, आप उस ध्यान को बैठ के करिए। आप अपना जितने प्राणायाम से, हाँ कपालभाति नहीं, क्योंकि वो पेट पर इम्पैक्ट करता है, राइट
1: जी।
0: तो इसलिए ध्यान और प्राणायाम भी जैसे बताया आपको, वो भी आप प्रेगनेंसी के अनुसार करेंगे। जैसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम में वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है प्रेगनेंसी में, और साथ ही साथ जब आप ध्यान करते हैं आप देखेंगे आपका पूरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी और मुझे लगता है बहुत हेल्प मिलेगा हमारी उन महिलाओं को जो फिलहाल में गर्भवती हैं और योगा फॉलो कर रही हैं या करना चाहती हैं। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि वो महिला जो जॉब भी करती हैं साथ में घर भी संभाल रही हैं, उनके पास इतना

0: समय नहीं होता है कि वो खुद के लिए योग को टाइम दे पाए। तो हमारा यही सवाल कि आप कोई ऐसा योग बताएं जो बड़ी आसानी से कम टाइम में वो कर लें और खुद को हेल्दी भी रख पाएं।
1: बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए वो भी काम करते हैं भाई, क्या बात है, उनको भूल गए क्या?
0: बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल करते हैं, पर मैंने महिलाओं को इसलिए मेंशन किया
1: क्योंकि हम दो महिलाएं बैठे।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: देखिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप अगर कार्य क्षेत्र में, मैं एक डेक्स योगा लेती हूँ जो श्री श्री रविशंकर जी ने इनफैक्ट 21 जून में डेक्स योगा यूएन में ली थी। एंड वो आप जैसे अपने आप जॉब में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप देखिए कि जितने जॉब वाले जो कंप्यूटर में जो काम करते हैं उनको नेक के ऊपर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। सर्वाइकल है, शोल्डर जैमिंग है, हेडेक है, ये ऊपर के प्रॉब्लम्स उनके लाइफस्टाइल में बहुत आ रही है। बिकॉज या तो हम लगातार बैठे हुए हैं और अपना कंप्यूटर देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या अपना नेटवर्क का काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहूंगी, आप अपने कुर्सी में बैठे बैठे कुर्सी हुआ करिए ना, आपको जैसे ही समय मिल रहा है हर 2 घंटे बाद अपना नेक मूवमेंट करिए, अपना शोल्डर मूवमेंट करिए, तो आपको इन सब चीजें आपकी बॉडी के अंदर डेवलप ही नहीं होंगी। बाकी जब शाम को महिलाएं अपने काम से वापस घर आती हैं, आधा घंटा अपने आपको जैसे पुरुष देते हैं वैसे आप भी दीजिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी, अपने शरीर के अंदर डेवलप हो ही ना तो क्यों नहीं हर 1 से 2 घंटे बाद एक तो चेयर से उठो, हल्का सा मूवमेंट करो, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, नेक रोटेशन है, शोल्डर रोटेशंस हैं, दाएं और बाएं अपने ले जाना, अपनी आंखों का रिवॉल्विंग कराना, ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में या हेडेक वाली, आप देखेंगे आजकल लोगों को माइग्रेन बहुत हो रहा है
0: जी,
1: सर्वाइकल बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग नेट के साथ इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स आज बहुत आम हो चुकी हैं। तो उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी, हर 1 से 2 घंटे के बीच में जहां आपको लगता है कि मेरे पास 5 मिनट है, तो उसमें अपना इंस्टाग्राम की लाइक्स मत चेक करो, अपने हेड को रिवॉल्व कर लो, शोल्डर रिवॉल्व कर लो।
0: ओके, बहुत ही छोटी छोटी चीजों को आपने बताया कि इसे भी फॉलो करके हम अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि योग करते वक्त कभी भी खुद को थकाना नहीं चाहिए, तो ये बताइए कि एक आसन कितने टाइम का होना चाहिए?
1: योग में थकावट है ही नहीं।
0: अरे वाह,
1: योग में थकावट ही नहीं है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, एक्सरसाइज और योगा में फर्क है
0: जी।
1: सूर्य नमस्कार योग भी है, सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज भी है। आप फास्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का रूप है, आप उसे मध्यम गति और स्लो और ध्यानस्थ कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, वो योग है। सिंपल, योग इज नॉट एन एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है, योग योगी है। अगर आप उसे फास्ट करते हैं तो वो व्यायाम बन जाता है, उसमें आप थकते हैं। आप अगर योग करते हैं अपने श्वासों के साथ, योग है मिलन आपका मन, श्वास और आपके शरीर का और आपकी भावनाओं का, इन 4 का मिलन होता है। और जब ये 4 जब चीजें हमारे 4 स्तर हमारे जीवन के मिल जाते हैं तो कभी भी थकावट आती नहीं, उल्टा आप थके हुए हैं और आप इसे कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देती हूँ।
0: आपने
2: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9760304534।
5: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

ना बड़ी खुशियों की तलाश है, ना बड़े सपनों का शोर, बस दिल को अच्छा लग जाए, ऐसे कुछ पल हो हर ओर, कभी किसी अपने की आवाज़, कभी अपनी पसंद का गीत का एहसास, यही छोटी छोटी बातें जो दिन को खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत सी दोपहर में, सुकून भरे पल में। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो हेलो फरमाइश, जहाँ पर हर फरमाइश के साथ जुड़ी होती है किसी के दिल की प्यारी सी कहानी, किसी की मुस्कान और ढेर सारी यादें। तो खुशी हाजिर है आप सभी के बीच, आप सभी का ये फेवरेट कार्यक्रम लेकर। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और समय की अगर बात करें तो यहाँ पर वक्त हुआ है 3:05। एक खूबसूरत सा गीत मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ आज की दोपहर, और आप भी मुझे कॉल लगाइए, खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइए। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए। तो सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत, लौट कर आते हैं इस प्यारे से गाने के उस पर।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा आपने ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ सोनू निगम जी, साथ में अलका याग्निक जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक, लिरिक्स थे जावेद अख्तर जी के और म्यूज़िक कंपोज़र थे जतिन ललित जी का म्यूज़िक था। बहुत ही खूबसूरत सा गीत एंड कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं इस वक्त तो हमें कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837898896 और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं जो इस वक्त मुझे याद आ रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना अपने श्रोताओं के लिए हम प्रेजेंट कर दें।

दोस्तों, दोपहर का ये समय होता है थोड़ा सा रुककर खुद को महसूस करने का, कुछ मीठी बातें करने का और उन गीतों को सुनने का जो दिल को सुकून देते हैं। और हमारे साथ एक लिसनर कनेक्ट होने वाले हैं, मतलब अभी उनकी फ़ोन की घंटी बज रही है और हमने कॉल रिसीव किया है। बात करते हैं डायरेक्टली, कौन बात कर रहे हैं? हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? आपकी शायद मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सर। सो प्लीज़ नेटवर्क में आ जाइएगा, उसके बाद हमें कॉल कीजिए ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से हमें मिल पाए, हम आपकी बातों को सुन पाए, समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो एवरीवन, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमें फ़ोन करें तो नेटवर्क में आकर फ़ोन करें, नेटवर्क एरिया में, ताकि कोई इशू ना हो, आपकी वॉइस एकदम क्लियर आए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको एक खूबसूरत सा गीत यहाँ पर सुनवाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा है, फ्रॉम द मूवी बीबी नंबर वन से। एंड लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी प्रयास कीजिए, शायद आपको भी कॉल जल्दी से लग जाए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। बातों और मुस्कुराहटों के इस खूबसूरत से सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपके परिवार में सब ठीक है? जी बताइएगा सर, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं?
1: घर पे आ रहा हूँ।
0: अच्छा, आराम फरमा रहे हैं आप? जी जी जी बताइएगा, आज क्या फरमाइश है आपकी? अच्छा ठीक है सर, 90s का गाना आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। जी मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा हम ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रहे हैं फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। किसी डिस्को में जाएं और लौट कर आती हूँ मैं अभी यहाँ पर इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। लेकिन श्रोताओं, आप भी मुझे कॉल लगाइए, मोबाइल नंबर है 9837896896 और इस खूबसूरत से गीत को इंजॉय कीजिएगा, अपनी दोपहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। ऑन एफ एम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, कभी कभी ना एक ज़िंदगी हमेशा बड़ी खुशियों से नहीं सजती, कभी कभी छोटी मुस्कान भी बहुत ख़ास हो जाती है जब कोई पर्सन हमारा बहुत करीबी होता है एंड हम उसको उन्हीं का फेवरेट गाना डेडिकेट करते हैं या फिर कोई गाना खुद के लिए भी सुनते हैं तो बहुत स्पेशल हो जाता है वो मोमेंट। और इस खूबसूरत से पल में आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सही गोल्डन चांस आपके पास है, तुरंत हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। चाहे आप कार में हो, घर में आराम कर रहे हो, शॉप पर बैठे हो या फिर कंपनी में काम कर रहे हो या कारखानों में आप बिजी हो, लेकिन बिजी होने के साथ साथ थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालिए, एक दो मिनट हमें भी कॉल लगाइए। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल का। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका जी? कहाँ से बात कर रहे हैं आप बताइएगा सर? मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी? करोला से बात कर रहे हैं जी? बताइएगा सर, कैसे हैं आप? ओके, ठीक ही रहना चाहिए। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी? ओके, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा हाँ जी। मैं खुशी बात कर रही हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही हैं। वो थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त हैं और हम अपने शो करने में व्यस्त हैं। कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच सर। अभी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये बेहतरीन सा गाना। और एवरीवन, मुझे भी बहुत पसंद है। और हाँ, अगर आप धूप में निकल कर जा रहे हैं धूप में, तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा ज़रूर लगा कर जाइएगा। देखिए, आपको नज़र भी नहीं लगेगी, आँखें भी सेफ रहेंगी एंड आपकी जो लुकिंग है ना, और भी ज़्यादा उसमें चार चांद लग जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएंगी। तो चश्मा लगाना ज़रूरी है, लगाओ आप। एंड अभी ये गाना सुनते हैं, लौट कर आ रहे हैं, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया उदित नारायण जी की आवाज़ में, और साथ में अलका याग्निक जी दे रही थी साथ, समीर जी के लिरिक्स थे। और हम अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त और क्या उनकी फरमाइश है। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: नमस्ते यादव, खुशी जी।
0: आपको भी नमस्ते यादव, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मोहम्मद अयूब, इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी अयूब जी, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: हम बढ़िया हैं और कामना करते हैं आप और आपकी टीम और आप सभी लिसनर अच्छे होंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल, हम सब बहुत ही अच्छे हैं, ऑल गुड। आप बताएगा आपके यहाँ पर सब खैरियत से हैं।
1: एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खैरियत से। लेकिन कल थोड़ा तूफान आया था, जलजला आया था, सब जला के रख दिया, पेड़ पौधे से लेकर लाइट का बिजली खम्बा तक उखाड़ दिया। बहुत कुछ ऐसी हुई, लाइट नहीं आई, बहुत जोरों से था।
0: ओके, तो ये किस टाइम, इवनिंग में था?
1: इवनिंग 4 PM तक।
0: ओके, तो अभी लाइट आ गई है?
1: तो लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है।
0: अच्छा, अभी तक लाइट नहीं है।
1: शहर से 2-4 किलोमीटर अंदर थोड़ा सा टूटा, पेड़ में बहुत गिर गए हैं।
0: अच्छा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा टूट गए हैं, गिर गए हैं।
1: और लाइट का खंभा गिर गया है, तार गिर गया है। बहुत
0: बहुत भयंकर तूफान आया था फिर।
1: ये बहुत ज्यादा सोचो मत, जब थोड़ी बारिश हुई तो अच्छा लगा, गर्दा धूल जो होता है उड़ता है ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: घर के कोने कोने जहाँ जहाँ सब कुछ सामान रखा होगा, हर हर कोना पहुंच गया होगा, इतनी धूल थी।
0: ओके, तो बताइएगा अभी का वेदर कैसा है, अभी मौसम कैसा है आपके यहाँ के सर प्रयागराज का?
1: एकदम चमक रहे हैं, अपनी लालिमा बिखेरे हुए हैं।
0: अच्छा, अभी कितना डिग्री सेल्सियस है आपके यहाँ पर टेम्परेचर?
1: इसमें चल रहा है, उतरा हुआ है, 41 था PM दोपहर में 12 बजे,
0: हाँ
1: अभी थोड़ा लो हुआ है,
0: ओके,
1: 38.9 चल रहा है, 9।
0: अच्छा 39 है, हमारी इधर अभी 35 डिग्री सेल्सियस है।
1: ओके ओके, यहाँ पर टेम्परेचर है।
0: जी बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्या आपकी फरमाइश है, बताइएगा हमें।
1: ये बहुत दिन बाद आपके प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, लेकिन सुनता हूँ टाइम निकाल के। व्यस्तता पता इतनी है लाइफ में, रोजी रोटी काम धंधे और भी काम में रहते हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: लेकिन मुरादाबाद चैनल को भूलना नहीं, भूलते नहीं, जब जब टाइम मिलता है जुड़ा हो जाता है आपके प्रोग्राम से, या रात में इवनिंग में प्रोग्राम में जुड़ा हो जाता है।
0: थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ लॉन्ग टाइम की बात जुड़े हैं और FM मुरादाबाद से आप कनेक्ट रहते हैं।
1: मैं अपने मन की बात बोल रहा हूँ, आपने अभी इतनी अच्छी लाइन बोली, मैं उसी से प्रेरित होके प्रोग्राम सुन रहा था, मैंने जस्ट ट्राई किया, लग गया था फोन।
0: जी बताइएगा कौन सी वो लाइनें थी, कौन सी वो लाइनें थी?
1: लाइन नहीं थी वो, आपने रिक्वेस्ट बहुत प्यार से किया कि कुछ टाइम निकाल के हमारा ये नंबर है, थोड़ा हमसे भी जुड़ जाइए।
0: ओके अच्छा, तो ये बात आपके दिल को छू गई हाँ, और आपने कॉल लगाया।
1: हमने उंगलियों को कस दिया कि बटन दाबिए और लगाइए।
0: अरे वाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच अयूब जी, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी, इतनी इतनी शिद्दत के साथ आपने कॉल लगाया है।
1: आप बहुत सुरीली आवाज में, आपके साथ सुरीली गीत सुनेंगे। एक फिल्म आई थी सलमान खान और जरीन खान की,
0: जी हाँ जी,
1: उसमें राहत फतेह अली खान साहब थे, एक सुजैन फिल्म के साथ में गुलजार साहब थे, साजिद वाजिद का म्यूजिक था।
0: जी
1: गाना बहुत प्यारा रोमांटिक गाना है, महसूस करते उस गाने में, बोले ऐसे अच्छे सुरीली अच्छी वाले सुन रही अच्छी होंगे।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत से गाना चुना है आपने आज की दोपहर, और ये खूबसूरत गाना आप किनके साथ सुनना चाहते हैं जरा बताइएगा सर।
1: अरे आपके साथ सुनेंगे तमाम लिसनर।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपकी पसंद का, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। चलिए इस खूबसूरत से गाने को लुफ्त उठाइए, आप भी इंजॉय कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी कोई गाना अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं ना, तो हमें तुरंत कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मुस्कुरा भी दीजिए, अब खुशी इतना खुश रहती है, तो तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता जितना जितने भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो भी मुस्कुराएं, 2 मिनट के लिए सही, लेकिन मुस्कुराइए यार। मुस्कुराने का कोई पैसा नहीं खर्च होता है। कितनी बार मैं बोलती हूँ आप मुस्कुराने में कंजूसी करते हो, हाँ ऐसा मत किया करो, और अभी प्यारा से गाना एंजॉय करो। बस मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सुनने वाले सभी साथियों को आरजी खुशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा राहत फतेह अली खान जी की आवाज़ में ट्रैक एंजॉय किया और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम, आप सुनाइए।
0: हम भी
1: हैं।
0: हाँ जी, ऑल गुड, बढ़िया हैं। आप बताइएगा, लगता है कि अभी आप शायद आराम कर रहे थे। हाँ, इतना स्लो बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
0: हाँ, और बताइएगा क्या हो रहा है सर?
1: बस मैडम अभी लंच कर रहा था, अभी खाना वाना खाया था।
0: ओके, खाना खाकर रेस्ट कर रहे थे आराम से, फिर सोचा आपने चलिए कॉल लगा लेते हैं।
1: मैंने सोचा कि मैंने कल नहीं लगा पाई थी कॉल, ये टाइम नहीं पाया था।
0: जी
1: तो कल मेरा एक हफ्ता पूरा हो गया था,
0: हाँ जी,
1: तो फिर मैंने सोचा कि मैंने आज ये टाइम है तो मैं कॉल पर एक सॉन्ग लगवाता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने सर, टाइम अपने लिए निकालना भी चाहिए। तो बताइएगा आज कौन सा गीत सुनने की तमन्ना है आपकी?
1: मैडम ये जो है नौ लव एल्बम है, उसका जो है अखा में सुरमा सॉन्ग है, वो सुनना है मैडम।
0: ठीक है, ये गीत आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। ख्याल रखिए आप अपना अच्छे से और इस गीत का भी आनंद लीजिएगा। तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं एंड मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी कॉल लगाओ, इतना आलस मत करो भाई। पूरा दिन माना काम में बिजी रहते हो, थोड़ा सा थक जाते हो, लेकिन ये समय होता है रिफ्रेश करने का खुद को। तो फटाफट से आप मुझे कॉल लगाओ, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। गानों में वो जादू होता है जो उदास इंसान को भी ना एकदम खिलखिलाने पर मजबूर कर देता है, वो भी मुस्कुरा उठता है, वो जादू है गानों में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस जादू को ना आप भी अपने जीवन में उतारो और तुरंत हमें कॉल लगाओ। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। एंड अभी ये प्यारा सा गाना सुनो, फिर मैं लौट कर आती हूँ, फिर आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। क्योंकि जब खुशी बोलती है ना तो ये चुप होने का नाम नहीं लेती और मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं साइलेंट हो जाऊँ, शांत हो जाऊँ और ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाऊँ, फिर आपसे गुफ्तगू करूँगी। एंड आपका भी बहुत मन है कॉल करने का, तो कर लो, रोका किसने है फिर, फटाफट से कॉल लगाओ।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, दोपहर की नरम सी धूप और आपके साथ की गई बातें, बस यही तो है हेलो फरमाइश की असली खूबसूरती। मैं आपसे कहती हूँ श्रोताओं कि आप भी मेरे साथ

0: कनेक्ट हो जाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस नंबर पे कॉल लगाइएगा और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइए। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ और जानेंगे उनकी क्या है फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर नमस्कार जी, अपना हाँ जी बहुत ही अच्छे हैं आप, अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं सर। जी शाकिर जी बात कर रहे हैं, बताइएगा आप सब खैरियत से हैं आपके यहाँ पर। हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज आपने कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी। और ये गीत आप किन के लिए सुनना चाहते हैं, इतना प्यारा सा गाना, जरा बताइए हमें।
1: ये सब घर के मेंबर हैं, मैं हमारे सब।
0: ओके ये फिल्म देखी है आपने,
1: जी हाँ, घर में फैमिली के साथ देखी थी।
0: कितनी बार देखी है जरा बताइए, आज आपका टेस्ट लेते हैं छोटा सा। बताइए कितनी बार देखी है फिल्म।
1: मूवी के बारे में,
0: हाँ हाँ
1: हाँ मूवी बहुत बढ़िया मूवी है, शाहरुख खान जी का बड़ा अच्छा रोल है।
0: जी मैंने आपसे मालूम किया है कि कितनी दफा देखी है, कितनी बारी देखी है, कितने टाइम ये मूवी देखी है आपने।
1: मैंने दो बार देखी मूवी।
0: अच्छा 2 बार देखी है। ओके अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका जी। तो चलिए श्रोताओं सर की पसंद के प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें से। बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन कि आप भी हमें कॉल लगा सकते हैं, इस खूबसूरत से सफ़र में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं कार में और हौले हौले ड्राइव भी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। इस सफ़र को सुहाना आरजे खुशी यहाँ पर बनाती है खूबसूरत गानों के साथ, आपकी बातों के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कॉल लगाना तो बेफिक्र होकर लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9838969837896896, और यहाँ से गाना सुनते जाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा आपने गीत इंजॉय किया फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें से, और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा गाना। साथ में उदित नारायण जी की आवाज़ और म्यूजिक था जतिन ललित जी का एंड लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी की। और कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन कहां से जुड़े हैं हमारे साथ वो हम उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप? जी बताइएगा, क्या करते हैं सर आप? जी जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है सर, जीत मूवी का आपको सुनवाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ जी ले लीजिएगा सर। जी ओके, ठीक है, आप अपने भाइयों के साथ ही प्यारा सा गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं, नमस्कार आपको भी सर। ये शुभ, ये इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी मैं भूल गई हूँ, बट हाँ मैं कहती हूँ कि गाना बहुत ही प्यारा है जीत मूवी का, और ये खूबसूरत सा गाना आप सब भी इंजॉय कीजिएगा। हमें फ़ोन भी लगाइए, मोबाइल नंबर है 9837896896। और इस खूबसूरत से गीत को गाया है सोनू निगम, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़। इस खूबसूरत गीत को सुनिएगा आप सब, मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से गाने के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया सोनू निगम अलका याग्निक जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। और श्रोताओं, आप मुझे पता है बिजी हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनने में, लेकिन आप कॉल लगाने में भी बिजी हो। मैं जानती हूँ आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू आप प्रयास करते रहिए, आपका कॉल ज़रूर लग जाएगा। एवरीवन, अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। और समय की अगर बात करें यहाँ पर, तो श्रोताओं वक्त हुआ है 4:17। हेलो फरमाइश जी, आपको भी नमस्कार हमारा, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ। मैम मायर
0: एमपी से बात कर रहे हैं। सुनील कुशवाहा जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप।
1: जी मैम, बस बैठे थे रेडियो सुनते हुए मैम, आप फोन भी लगा रहे थे, फोन भी लग गए मैम।
0: जी आप क्या करते हैं सर, जरा बताइएगा अपने बारे में।
1: जी बैठे थे मैम अभी।
0: नहीं नहीं करते क्या है लाइफ में, अभी तो आप बैठे थे आराम से।
1: जी आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम, आओ मशीन चलाते हैं, जेसीबी में चलते रहता है, आओ अपना काम भी होता रहता है।
0: ओके
1: अभी बैठे थे तो फोन ट्राई कर रहे थे, फोन भी लग गया मैम।
0: जी बहुत अच्छा किया आपने सर, बताइएगा एमपी का मौसम कैसा है इस वक्त।
1: जी मैम, एमपी में उमस जाते हैं मैम, अभी गर्मी बहुत, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था, अभी उमस
0: जी
1: जाते हैं मैम।
0: अच्छा, उमस ज्यादा है अभी
1: जी
0: तो,
1: जी जी मैम
0: बताइएगा आप इतना काम में व्यस्त रहने के साथ साथ रेडियो भी सुनते हैं, वो रेडियो के प्रति जो प्यार है आपका, उसके लिए तो दिल से सलाम हम आपको करते हैं। और आज आपने कॉल किया है, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: जी मैम, फिल्म चोरी चोर छुपे का सुनवा दीजिएगा मेहंदी वाला मैम, और सुनवाएंगे कितने रेडियो, दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल, सभी के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके। आप भी हमें फोन लगाओ सबसे छिपकी नंबर है 9837889886, और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ अभी इस प्यारे सी गाने के उस पर।

0: कृतुं महागाय सूर्य कोटि सम प्रवाह निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए।
1: लाला कैलाशनाथ मल्होत्रा।
0: अथ कैलाशनाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुंब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम
2: रंजीत कुमार मल्होत्रा।
0: रंजीत कुमार मल्होत्रा।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम करती है आरजे खुशी आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और समय हुआ है यहाँ पर 4:32। एक खूबसूरत सी हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर हमारे साथ कनेक्ट हुई है, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग भाई, कहाँ खोए खोए हैं आप? हाँ जी लाइबा जी, कहाँ पर गुम हो गई थी अभी आप? हाँ एकदम खोई खोई सी मुझे नजर आई। मैंने इतनी बार हेलो बोला, कोई रिप्लाई नहीं मिला।
1: बोल रही थी गुड इवनिंग।
0: हाँ
1: मुझे ना
0: ओके। और अभी धूप भी बहुत तेज है राइट बाहर, है ना? कोई बात नहीं डियर, होता है। और बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आपसे बात करके और ज्यादा हैप्पी हो गए हैं।
1: मुझे भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है।
0: आप बहुत समय के बाद हमसे जुड़े हो, बताओ कहाँ व्यस्त थे आप?
1: हम क्या है ना कि कुछ तो पढ़ाई का पेशा और तो थोड़ा सा फैमिली की वजह से मैं बिजी हूँ।
0: हाँ
1: ठीक है ना, आपको कॉल नहीं की, लेकिन यकीन करना बातें आपकी हमेशा होती है।
0: हाँ ये तो है। अच्छा जी, ऐसा भी है।
1: हाँ बिल्कुल, जब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो 10 से 15 मिनट तो आपकी बात घूम जाती है। मैं पूछती हूँ, बताओ आज तो प्रोग्राम में तुमने मैसेज किए तो क्या किया, एंड कॉल की तो कौन सा सॉन्ग सुना। मैं पूछती रहती हूँ, मतलब
0: मतलब आपकी बातें आपकी फ्रेंड से होती हैं, तो वो भी रेडियो के लिए ही बातें होती हैं और सारी चीज़ें। मतलब कहने का ये है फुल मीनिंग कि आप रेडियो से बहुत प्यार करती हैं, चाहे दोस्त के साथ हो, फैमिली के साथ हो, रिलेशन में हो, कहीं रिश्तेदारी में जब आप जाती हैं रेडियो को लेकिन नहीं छोड़ती हैं, वो प्यार आपका हमेशा बरकरार रहता है।
1: बिल्कुल मैम, कहीं पे और, लेकिन ये तो ऐसा है कि मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगी, बिकॉज शायद कम या ज्यादा, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ है।
0: हाँ वैसे लगा नहीं था ना आपको स्टार्टिंग में कि इतना यू नो अच्छी बॉन्डिंग सबसे हो जाएगी, इतने सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगी एफएम मुरादाबाद के साथ कनेक्ट होने से। हाँ
1: नहीं, सच में जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सिर्फ मेरे पास दो नाम थे, एंड अब मेरे पास इतने सारे और मेरी इतनी सारी दोस्ती हो चुकी है और मेरे फैमिली कनेक्शन भी उनसे मतलब इतना अच्छा हो गया कि मैं खुद हैरानी हूँ कि भाई यहाँ पे इतने अच्छे लोग भी हैं। मेरे भाई एक बने हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मतलब कॉन्टेक्ट बन चुके हैं, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है आपसे मेरी बात हुई है। तो मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे।
0: एग्जैक्टली और सबसे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना?
1: हाँ ये तो चीज है मैम, मतलब मुझे मेरे दोस्तों से मिलकर सच में ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी, मतलब 8-10 महीने हुए हैं लेकिन फीलिंग ऐसी आती है जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की आती है जो मेरे साथ में पढ़ती है।
0: हाँ वो होता है ना लाइबर, जब हम खुद बहुत अच्छे होते हैं ना तो हमें सामने वाले भी वैसे ही नजर आते हैं और वैसे लोग भी हमें मिल जाते हैं।
1: हाँ ये तो है मैम, मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ती, मैं तो पूरी पूरी कोशिश करती हूँ
0: हाँ
1: उनको खुश रख सकूँ।
0: ये तो बात है, और आपकी वो बातों में ना झलकता भी है वो प्यार।
1: हाँ मैम, मैं दिल से करती हूँ जिन लोगों से, मैं दुश्मनी भी ऐसी करती हूँ और जिनसे प्यार करती हूँ उनसे प्यार भी इतना इच्छा करती हूँ।
0: ओके दुश्मनी भी करती हो आप, लगता तो नहीं है।
1: नहीं, मेरे फिलहाल यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आज तक नहीं हुई भाई,
0: होनी भी नहीं
1: क्योंकि
0: चाहिए।
1: मेरा मिजाज ऐसा है ही नहीं मैम कि मैं किसी से गुस्सा रखूं, मतलब गुस्सा हो जाऊं,
0: हाँ
1: ऐसा मेरा मिजाज नहीं है। मैं
0: और मुझे ऐसा
1: सबको
0: लगता
1: चाहती हूँ
0: है,
1: कि मेरी वजह से सब खुश हो जाए।
0: एग्जैक्टली राइट लाइबर, सही कहा आपने। मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी से गुस्सा कर कर नाराज होकर क्या फायदा है, इतनी प्यारी सी जिंदगी मिली है, सबके साथ प्रेम से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए।
1: बिल्कुल मैम, तभी तो आप जिस लोगों से मेरी बात होती है।
0: एग्जैक्टली अच्छा ये बताओ, अभी आपकी जो फ्रेंड सुन रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप?
1: जो मेरी फ्रेंड्स फिलहाल रेडियो पे सुन रहे हैं,
0: हाँ
1: मेरी 2 ही 3 दोस्त हैं जो मेरी खास है, वो तो यहाँ रोज आती हूँ। और सच बताऊँ ना मैम, जब से वो मेरी लाइफ में आई है
0: हाँ
1: मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर है वो, एंड उसके मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए, वो इतनी तारीफ लायक लड़की है। और मैं तो यही चाहूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, बहुत अच्छी है मतलब मेरे लिए, मुझे और का तो पता नहीं।
0: सही बात
1: मेरे
0: है।
1: लिए वो बहुत अच्छी है, जिसने भी मिलाया सच में वही थैंक यू, एंड आपको भी थैंक्स कि आपने मुझे इतनी अच्छी दोस्त से कनेक्ट कराया।
0: मोस्ट वेलकम। मैंने कहा था ना आप खुद प्यारे हो तो आपको प्यारे प्यारे दोस्त भी मिल जाते हैं। तो बताओ लाइबा, आज आप क्या सुनना चाहोगी?
1: मैम मूवी का नाम है पुलिस ऑन बछड़ी, उसमें एक सॉन्ग है मैम, तुम दिन को वो दोहराएंगी, जीने की इजाजत तो जीएंगे वरना मर जाएंगे।
0: हाय, इतने प्यार से लड़की बोलोगी तो क्या करेंगे हम, मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे।
1: सुनवाएंगे।
0: ठीक है, और ये गाना किनको डेडिकेट करते हैं आप, जरा बताइएगा हमें।
1: मैम ये सॉन्ग स्पेशली डेडिकेट रहेगा अफरोज फातिमा को,
0: हाँ
1: एंड डिस्ट्रिक्ट रामपुर से मोहम्मद कावर, अध्यक्ष फातिमा,
0: जी
1: शबनम जी,
0: हाँ
1: और ये सॉन्ग स्पेशली डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो सुनवाते
1: थैंक यू
0: हैं।
1: सो मच मेरी कॉल रिसीव करने के लिए।
0: मोस्ट वेलकम। इतने प्यार से आप कॉल लगाते हो और इतनी शिद्दत के साथ, तो कैसे हम अटेंड ना करें आपका कॉल, बताओ हमें।
1: मैम एंड 72 आवर्स बाद हम आपसे मिलने आ रहे हैं भाई, तो
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: आइए।
1: मैं बहुत खुश हूँ।
0: हम भी बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी हुई आपने हमें बताई है, और जब मिलेंगे तो और भी ज्यादा खुश होंगे।
1: बिल्कुल, एंड जो जितने सुने हैं ना मेरे उन सभी से कि अगर शबनम भी वगैरह सुन रही है तो जरूर आएगा इस मुरादाबाद, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो आएगी।
0: बिल्कुल, सबको आपने इनवाइट कर दिया है तो वो जरूर आएंगी। एंड
1: आ जाना, पार्टी खुशी मैम की तरफ से होगी।
0: हाँ जी, मेरी तरफ से पार्टी होगी। डी ठीक है, डन।
1: डन मैम, ठीक है,
0: ओके बाय, ठीक है।
1: बाय मैम।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं अभी, लेकिन ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत है, अनुराधा पाटवाल जी साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा गाना आप सुनिएगा। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के इस पार। और हाँ, कॉल लगाना मत भूलिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837 8 9 6 8 9 6।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9760304534।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
7: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और यहाँ पर अभी समय हुआ है 4:47 एंड हमारे अगले कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए श्रोताओं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश, सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीर से आपका नाम सोता मोहम्मद इशरत आप बात कर रहा हूँ। मैम कैसे हैं आप?
0: इशरत जी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आप कैसे हैं और आपके परिवार में सब कैसे हैं, फैमिली में?
1: मैम सभी अच्छे हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम करोड़ों में एक रखते हैं। मैं आपका शो रोजाना सुनता हूँ।
0: जी
1: केंद्र में सुनता हूँ, रखते हैं।
0: शुक्रिया। और बताइएगा इस वक्त क्या कर रहे हैं आप?
1: मैम इस टाइम तो मैं बैठा था, प्रोग्राम सुन रहा था, कॉल भी लगा रहा था, कॉल लगे अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: मैम मेरी आज फरमाइश है मूवी के नाम में बेवफा सनम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तुमको शोहरत हो मुबारक हमें रुसवा ना करो। मैम आज के हर फरमाइश में यार सॉन्ग प्ले कर देना को सुनने वाले।
0: जी बिल्कुल बताइएगा।
1: मैम सबसे पहले ये है स्वार्थ से विजय राठौर और ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, साथ में आप और हम।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत से गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार आपको भी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन अभी सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। और आप भी अगर कॉल लगाना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल शो में तो बिल्कुल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत, अभी आपसे बातें भी करेंगे। आप हमें कॉल तो लगाओ तभी तो हम बात करेंगे ना एवरीवन। अब आप सोच रहे हैं कि फ़ोन भी ना लगाएं और बात भी हो जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ पॉसिबल नहीं है ना, जल्दी से कॉल लगाइएगा। और अभी ये गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश में, और मैं आपके साथ आपकी खुशी। अभी बात करते हैं अपनी लास्ट कॉलर से, कौन जुड़ी है हमारे साथ। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग दी।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मैं बहुत
0: अच्छी हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इतने प्यार से आप पूछोगी ना, जो इंसान ठीक ना हो वो भी ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी, और बताइएगा आपके यहाँ पर सब कैसे हैं?
1: सभी लोग खैरियत से हैं यहाँ पे भी
0: जी। अपना नाम बता दीजिएगा, हम तो हाल चाल पूछने में भूल ही गए।
1: ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: निखत फातिमा जी हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, बताइएगा निखत, सब क्या हो रहा है अभी?
1: नहीं नहीं गर्मी हो रही है इस टाइम तो।
0: हाँ, गर्मी तो आपने करवा के रखी है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन
1: हमने
0: बारिश।
1: नहीं करवाई है, नहीं हम आपको कहे तो।
0: अच्छा, आप हमें कह दीजिएगा। हमने तो देखिए रात बारिश करवा दी थी, सुबह सुबह में वो बारिश आई थी ना रात में।
1: हाँ रात तो इतना शोर भरा तूफान आया था जी।
0: हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं सो रही थी, मुझे ब्रदर ने बताया कि रात में बहुत तूफान आया था, बारिश भी आई थी। मैं सुबह उठकर देखा,
1: हाँ जी
0: मैंने अपने आसपास तो सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी थी, इधर उधर उड़कर चली गई। तो आप बताओ क्या सुनोगे आज?
1: जी, मैं बंदिश मूवी का सॉन्ग सुनूंगी, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना चुना है आपने। और ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं सॉन्ग सुनूंगी आपके साथ और मेरे दोस्तों का, ये फातिमा और सभी सुनने वाले दोस्तों के साथ।
0: ओके, सुनवाते हैं प्यारे से गीत। कॉल करने के लिए थैंक यू,
1: ओके बाय बाय जी।
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं निखत जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना, और आप सब इंजॉय करो। दोस्तों आज आप कॉल नहीं लगा पाए हैं, तो कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, आपके पास अभी 2 दिन और हैं। जी हाँ, फ्राइडे और सैटरडे हैं, तो आप इन 2 दिनों में भी कॉल लगा सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अभी फिलहाल तो मैं इसी गाने के साथ लेती हूँ जाने की अनुमति, एंड मिलूंगी आपको मैं टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खूब सारा पानी पीते रहिए, अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखिए अपना, और अपनी फैमिली का भी, बड़े बुजुर्गों का भी, जो सीनियर सिटीजन हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि सर आप भी अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा, और छोटे बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब परिवार स्वस्थ होता है, खुश होता है, तो परिवार में और ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। बाकी खुशी अब आपसे विदा लेती है, बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना और मुस्कुराते रहिए। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

0: कैसे हालचाल है। मेरा नाम आरजे आनंद है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू
1: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: जी सर, इट्स माय प्लेजर। सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
0: ऑलराइट।
1: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
1: ये अमेजिंग है बिल्कुल। अच्छा, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
0: ऑलराइट। अच्छा, पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
1: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
0: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
1: नहीं, डेफिनेटली मजा तो।
0: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
1: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए। तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है। वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं। तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती हैं, बोतल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया। क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है, बोतल लगा देती है, और बोतल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बोतल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
0: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में, और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में, पूछूं?
1: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है। छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं। मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
0: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
1: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते हैं।
0: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा।
1: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
0: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
1: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
0: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को, मुझे लगता है
1: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
0: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके दांतों की कैसे मतलब देख रेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
1: देखिए बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
0: ओके,
1: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है। जो हम लोग अवॉइड,
0: क्या बात है, तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब से?
1: देखिए आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
0: करेक्ट
1: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
0: अब नहीं चलता है,
1: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाई चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
0: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
1: एग्जैक्टली।
0: ऑलराइट। अच्छा सर जी प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं।
1: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं ठीक है, तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं, और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं, और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
0: ओके अच्छा ओके। सो डॉक्टर साहब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन जिसे हम कह सकते हैं ना कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
1: सर दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
0: ओके।
1: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
0: ओके।
1: और मतलब इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से उन्हें डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
0: ओके।
1: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है, डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है।
0: ओके।
1: और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
0: ओके डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारी आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार, और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज की जिंदगी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
1: सर ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
0: ओके।
1: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
0: ठीक है,
1: बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
0: जी सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
1: डेफिनेटली।
0: ऑलराइट। जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया, सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो कहीं चला जाएगा,
1: ऐसा नहीं चलेगा।
0: ऑलराइट।
1: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
0: ऑलराइट। अच्छा जी चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को 5-5 महीने 6-6 महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
1: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हैं, कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो 1 महीने खराब हो जाता है।
0: ओके।
1: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते, कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट 6 महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
0: ऑलराइट चलिए, तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, और तो ये क्या सही बात है?
1: इट्स वेरी ट्रू। देखिए जो हमारे दांत का एनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं, और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे, जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआ होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रू ग्रुप बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रुप बन जाते हैं।
0: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
1: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
0: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
1: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में।
0: समझ,
1: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता वो।
0: हाँ, बिल्कुल
1: ठीक है। बास मेथड बोलते हैं, BASS, बास मेथड।
0: ओके,
1: मतलब जिन लोगों को देखना वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
0: अच्छा सर, कई बार जिससे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लौंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
1: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
0: ओके,
1: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के पीछे फंसा रहेगा, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता है। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। बट लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है, उतना गंभीर दर्द होता है।
0: तो सर, इससे बचने का,
1: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो।
0: ओके,
1: हाइजीन, ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
0: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
1: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई, माता लोग भी, हमारी जो पुरानी माता जी हैं, वो बोलती है कि हाँ भाई, डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते। ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है।
0: Okay.
1: वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
0: Exactly.
1: और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो।
0: तो
1: मैं तो, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी, मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं, ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए, चुपचाप ब्रश उठाओ, ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
0: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है, आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए पेन?
1: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
0: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
1: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन के खाके दांत का इलाज नहीं कर सकते।
0: करेक्ट,
1: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
0: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
1: जी
0: ओके। सो दोस्तों, देखिए तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
1: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन, मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
0: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है
1: नहीं? बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों दांत है, अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है, तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
0: ओके,
1: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती है पेट से, वो बदबू करती है,
0: वो बदबू करती है। ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है, कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
1: सर ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
0: ओके,
1: वंस ए वाइल्ड ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
0: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में वन से वाइप जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
1: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
0: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
1: एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा, जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
0: ओके,
1: धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा।
0: ओके,
1: और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
0: ओके,
1: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है।
0: ऑलराइट,
1: अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
0: जैसे
1: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तंबाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसे लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। तो हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
0: जी,
1: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले। और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखती लगा रही तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा है। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये भी था कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटखा क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल डाड़ फंसी हुई है। मैंने कहा यार तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी डाड़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल डाड़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब डाड़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको डाड़ उखड़वा, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
0: ओह माय गॉड,
1: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
0: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
1: हाँ गलत है वो।
0: ओके,
1: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़।
0: ओह माय गॉड, कई बार ये होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो। आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
1: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
0: ओके,
1: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है।
0: Correct.
1: तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है।
0: Exactly.
1: उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है।
0: Okay.
1: इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
0: ओके okay. अच्छा जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत, क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो कितनी ब्लीचिंग करा लो,
1: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
0: ओके
1: okay. वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
0: ओके
1: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
0: ओके
1: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
0: ओके
1: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है मतलब जो अफ्रीकन है उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे हैं, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
0: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
1: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
0: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
1: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती।
0: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी होती है वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
1: एग्जैक्टली, ब्रश से ही साफ
0: मिला के। तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं जागो, अब ब्रश करने की बारी, आप जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम। सर एक सो डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, ये एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
1: नहीं, डेफिनेटली मतलब इट इज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आप मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, मतलब इट्स नॉट सो सिंपल।
0: एग्जैक्टली,
1: ठीक है,
0: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती है।
1: Exactly.
0: आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल, आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे, और वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
1: सर अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं, और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं।
0: ओके,
1: इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
0: एक्सपीरियंस होल्डर।
1: एग्जैक्टली,
0: ओके,
1: वो सारा स्किल का खेल है, अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा।
0: ओके,
1: इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटोप्राजोल, ठीक है, रेव्योप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा।
0: करेक्ट,
1: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा?
0: बिल्कुल सर,
1: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है, जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस कब और इन सब चीजों से गुजरना।
0: ओके, सो श्रोताओं छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बार ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल डाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
1: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
0: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो कैल्शियम, ये दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ
1: नहीं। दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी है, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
0: ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है,
1: ठीक है। अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा? बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है ना, तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए?
0: सही बात है,
1: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया है इनको? जरूरत है,
0: जरूरत है, करेक्ट।
1: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो खिनमानी वो नहीं खाएगा,
0: करेक्ट,
1: ठीक है। आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
0: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर, जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से एक सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
1: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: ओके,
1: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
0: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर कुछ और कहना चाहते हैं आपसे? मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
1: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुरादाबाद आके, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
0: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और RJ आनंद आपका दिल से शुक्रिया करते हैं सर।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
2: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
3: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ,
2: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

हाय हेलो जी, कैसे हैं आप हमारे लिसनर्स। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और उम्मीद करती हूं कि आप भी अच्छे होंगे। जानती हूं दोस्तों, थोड़ा थक गए होंगे, अपने घर पहुंचने वाले होंगे या फिर पहुंच गए होंगे। दोस्तों फिलहाल ये शाम बड़ी ही अच्छी लगती है, जहां हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से दूर अपने कमरे में आ जाते हैं। हमारा कमरा ही तो होता है जो हमारा इंतजार करता है, जहां हम खुद से मिलते हैं और खुद से बातें करते हैं। सच में दोस्तों, मुझे तो शाम का इंतजार रहता है और मुझे लगता है मेरी तरह आपको भी शाम का इंतजार रहता होगा। फिलहाल दोस्तों, आप और हम खुद से बातें करेंगे और आज खुद की बातें करेंगे। दोस्तों इस भागती दौड़ती जिंदगी को लेकर मुझे एक शायरी याद आ रही है, वो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। दिन भर की शाम अब ढलने लगी है, शाम होते ही एक नई उम्मीद जगने लगी है। वो शहर का मिजाज और रास्ते का शोर, हाथों में चाय और यादों का सिलसिला, लगता है खामोशी भी अब बातें करने लगी है। दोस्तों जिंदगी के सफर में आप अकेले नहीं है, मैं हूँ आपके साथ हमेशा, आपकी दोस्त प्राची।

दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से आपके साथ आपसे बातें करने। आपकी प्राची, उम्मीद करती हूँ कि आप कहीं नहीं गए होंगे, और अगर आप गए भी हैं तो वापस आ जाइए, क्योंकि यहाँ हम करेंगे अपनी बातें, जिंदगी की बातें। दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में आप अकेले नहीं है, हम मिलते रहेंगे आपसे हर रोज FM मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, कुछ बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं जो मुझे याद आ रही है। इस जिंदगी के सफर में तुम अकेले नहीं हो, हर मोड़ पे कुछ किस्से भी साथ चलते हैं। जो लफ्ज कभी खामोशियों में छिपे थे, वो आज तुम्हारे हम सफर बन गए हैं। तन्हाई अगर दस्तक दे भी रही है राहों में, तो यादों की कारवां भी साथ चलती है। थक जाओ तो ठहर जाना, जरा मुस्कुरा कर, क्योंकि जिंदगी के सफर में तुम अकेले नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आप अकेले नहीं है जिंदगी के इस सफर में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर FM मुरादाबाद 89.6, और आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं 9837896896 पर। दोस्तों, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और आप वहां सर्च कर सकते हैं FM मुरादाबाद 18.6, और वहां आपको हमारा ऐप भी मिल जाएगा और आप वहां से इजीली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए अपनी दोस्त प्राची के साथ। फिर से वापस आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: दोस्तों फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जहाँ करते हैं हम दिलों की बातें। दोस्तों कभी आपने लाइफ में ये महसूस किया है, जीने के लिए कभी सोचा ही नहीं? दोस्तों अक्सर जिंदगी की रेस में, अपनी जॉब में, बिजनेस में हम इतना उलझ जाते हैं कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। दोस्तों जिंदगी बहुत ही ट्रांजिएंट है, यहाँ कुछ भी नहीं पता। जो समय आज है वो कल हो या ना हो, जो लोग आज आपके साथ हैं वो कल हो या ना हो। तो अगर वक्त नहीं भी है तो निकाल लीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए वक्त निकालिए, चाहे थोड़ा ही निकाले पर निकाले, क्योंकि जिंदगी में प्यार और सुकून भी जरूरी है। जिंदगी तभी खूबसूरत बनती है जब हम इसमें अपने लिए और अपने सुकून के लिए भी समय निकालते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारी लाइन है जो मुझे याद आ रही है, कभी पुरानी मुस्कान बनकर, कभी अपनी आवाज बनकर, जब अगली बार दिल थोड़ा खाली लगे तो खुद से बस इतना कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। बिल्कुल दोस्तों आप अकेले नहीं है, मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची, मिलती रहूंगी आपसे एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आप हमसे जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। मिलते हैं आपसे वापस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तब तक के लिए रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और हाँ दोस्तों दिल से मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिए।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: हेलो नमस्ते आदाब, रेडियो एफएम मुरादाबाद से मैं हूं आपकी दोस्त छाया। वेलकम। मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर
5: में, सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूं और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। मेरी रुचि अगर ऑपरेशंस में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
4: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
5: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वो ही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपने बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है।
4: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
5: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
4: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
5: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
4: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
5: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं, और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप सोचते कि पूरा हमारा शरीर जो है, वो हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है, अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
4: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, बस ऐसी हमारी कोशिश है, और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
5: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्दल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास हैं जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
4: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
5: जैसे मैंने बताया, मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है, और जिसका रोकथाम हो या जैसे ही पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
4: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे?
5: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टियाँ आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है, इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर से भी देखते हैं, और ये हमें कई और बीमारी में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियाँ, अगर सर में दर्द, उल्टियाँ बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
4: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी, और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जाँच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
5: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूँगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है, तो ये सब चीजें बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
4: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है?
5: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर MRI जो हमें और अच्छे से बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचे हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नए पद्धति भी आई है, जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उससे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
4: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप BMC हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं?
5: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, ICUs, OT, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
5: मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखना कुछ कम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है। और आप समझिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, जब 28,000 लोग साल के इसे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतने जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
4: ये थे हमारे साथ BMC हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सकें।

0: दोस्तों, स्वागत है आपका एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और आप सुन रहे हैं एफ एम मुरादाबाद 89.6। दिल की भागदौड़ के बाद ये जो शाम का वक्त है ना, ये सिर्फ सुकून का नहीं, खुद से मिलने का भी होता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी तेज दौड़ती है, कभी हमें ठहरना सिखा देती है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी शाम में बस एक छोटी सी बात याद रखिए, हर दिन को जीना है, सिर्फ काटना नहीं है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की पूरी दुनिया हो सकती है। मैं हूँ आपके साथ और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, कुछ शायरियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जिंदगी की राहों में ठोकरें तो मिलती हैं, हर मोड़ पर नई सीखें भी मिलती हैं। जो मुस्कुरा कर चलते हर हाल में, उसी को खुशियां मिलती हैं। दोस्तों, ये शायरी हमें बहुत कुछ सिखाती है और दोस्तों, सच में ये जिंदगी की हकीकत को भी बयां करती है। कभी हंसी कभी आंसू का नाम है जिंदगी, हर पल बदलते एहसासों का पैगाम है जिंदगी। थोड़ा ठहर कर जी लो दोस्तों, क्योंकि हर पल अनमोल है जिंदगी। दोस्तों, ये जो शायरी है ये बताती है कि जिंदगी कितनी ट्रांजिएंट है। यहाँ एक पल में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने पलों को जिए, हर पल को जिए। दोस्तों, बड़ी प्यारी सी शायरी मुझे याद आ रही है। थोड़ी सी धूप थोड़ी सी छाव है जिंदगी, कभी सुकून तो कभी एक तूफान है जिंदगी। जो दिल से जी लिया हर लम्हा, सच में वही जिंदगी का नाम है। जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 9837896 पर और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एफ एम मुरादाबाद। रेडियो बजाती रहो, गुनगुनाती रहो।
1: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
3: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9548088900।

0: गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने इवनिंग में एंजॉय किया सनमपुरी की खूबसूरत सी आवाज़ में। एंड इस सुहाने से सफर में मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ, आपकी अपनी खुशी। और ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर प्राची भी हैं, जी हाँ, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे। तो मैंने कहा चलो प्राची आप भी हाजिर हो जाओ हमारे साथ। हाय प्राची, वेलकम है आपका।
1: थैंक यू खुशी जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के।
0: हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। इस सुहानी सी इवनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और मेरे साथ में अभी प्राची जी भी हैं, जो कि जिनकी आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। तो मैंने कहा प्राची अब अकेले फील मत करो, ये लोनली फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ आपके साथ। और हमारे साथ अभी लाखों श्रोता हमारे साथ कनेक्ट हैं, जो इस वक्त कुछ तो ऑन द वे कार में हैं और कुछ अभी घर पहुंच चुके हैं, आराम से अभी बैठे ही हैं और रेडियो ऑन किया है कि चलिए कुछ खूबसूरत सी गाने हम सुन लेते हैं, खूबसूरत आरजीज की बातें सुन लेते हैं। तो हम दो कुड़ियां यहाँ पर आ गए हैं आपकी शाम को बेहतरीन बनाने के लिए। तो प्राची क्या आप क्या कहना चाहोगे इस प्यारी सी शाम में?
1: इस प्यारी सी शाम का हिस्सा बन के आपके साथ मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हम पूरे अपने एक घंटे के शो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और
0: बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं,
1: बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हम देने वाले
0: हैं। एग्जैक्टली, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ मुझे, अभी आप जैसे आपने मुझे बताया कि आप सुबह यू नो स्कूल जाते हैं, टीचिंग करते हैं, आप टीचर हैं, सो लाइक सुबह का यू नो पूरा दिन आपका बिजी होता है और जब शाम में आप आती हैं तो सबसे पहले इवनिंग में घर जाकर आप क्या करती हैं, जरा हमें बताइएगा।
1: जैसे घर जाती वैसे मेरी मम्मी मेरा मुझे पानी देती है।
0: हाँ।
1: वो इतना काम कर रही होती घर पे, उनके भी अपने काम होते हैं घर पे।
0: एग्जैक्टली यार,
1: फिर भी वो मेरे लिए आती है, मुझे पानी देती है।
0: हाँ।
1: तो मतलब वो जो माँ का जो प्यार होता है वो सच में बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि
0: exactly.
1: माँ ही एक ऐसी मतलब शख्स होती है हमारी जिंदगी में जो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल रहती है।
0: और कभी वो ये नहीं कहती हैं कि बेटा मैं थक गई हूँ तो आप खुद कर लो, कभी नहीं बोलती हैं। हमेशा वो हम कुछ भी उनको काम के लिए बोलें, कुछ भी बोलें, मम्मा हमेशा हाजिर हो जाती हैं। लाइक अगर हम अपने ब्रदर को भी बोलेंगे तो एक टाइम को वो भी बोल देंगे कि मैं थक गया हूँ अपने आप कर लो, लेकिन मम्मा एंड पापा कभी बच्चों के लिए ऐसा नहीं करवाते हैं। चाहे वो कितना भी खुद थक जाते हैं लेकिन बच्चों की खुशी में वो हमेशा खुश रहते हैं।
1: बहुत ही सही, बिल्कुल सही बात आपने कही खुशी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली हमारी मम्मी जो स्पेशली माँ होती है हमारी लाइफ में, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहती है, चाहे वो डे हो नाइट हो कुछ भी हो, वो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए और हमें बहुत लकी फील भी करना चाहिए
0: यार।
1: कि हमारे पास गॉड ने हमें एक माँ दी है।
0: एग्जैक्टली, एंड हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतनी स्वीट इतनी लवली मम्मा है। और अभी मुझे मम्मा का चेहरा एकदम याद आ गया यार। इतनी सारी बातें हो गई, चलिए अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पर कनेक्ट होते हैं फिर से अगेन। लेकिन श्रोताओं हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी शो को अभी सुन रहे हैं राइट नाउ तो हमें व्हाट्सएप करो, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, इस पर अपने मैसेज पहुँचाइए और अपनी शाम को और भी खूबसूरत बनाइए आरजी खुशी एंड प्राची के साथ। देखिए प्राची भी खुद बोल रही है वाह। प्राची वैसे आपकी आवाज बहुत प्यारी है यार।
1: थैंक यू खुशी, और आपके साथ मुझे लगता है आपको ज्वाइन करके तो बस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिल से बातें करती हैं आप।
0: दिल से दिल का रिश्ता है
1: तो दिल से और हमारी श्रोता
0: हमारी श्रोताओं का भी। हाँ देखो वो भी मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त, ऐसे ही मुस्कुराई। और हाँ दोस्तों केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं मैं कहूंगी आपसे कि टेंशन फ्री हो जाइए और केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, पानी भी पीते रहिए और स्माइल तो आप छोड़िए मत, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना तो आप बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ऐसे मुंह बनाकर बैठे रहोगे ना तो अच्छे नहीं लगोगे, इसलिए मुस्कुरा दीजिए। अब चलिए अभी बहुत सारी बातें हो गई, एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं। ओके प्राची चलिए तो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सब इंजॉय कीजिएगा, हम लौट कर आते हैं शानदार गाने के उस पर।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का इस ब्यूटीफुल शाम में। खुशी आपके साथ है और मेरे साथ में यहाँ पर प्राची भी है। हाय प्राची, हाउ आर यू?
1: हेलो खुशी, एंड हेलो आवर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग?
0: लिसनर तो बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश भी हैं कि आज हमें दो दो कुड़ियों की आवाज़ सुनने को मिल रही है। दो दो गर्ल्स यहाँ पर आई हैं और ये हमारी शाम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, खूबसूरत होने वाली है। बिल्कुल सही सोचा है आपने एवरीवन।
1: अच्छा खुशी, आज आपको पता है कि आज कौन सा स्पेशल डे है?
0: हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ बताओ। अच्छा प्राची बताइए बताइए।
1: आज स्पेशल डे है, बॉन्ड विद योर डॉग डे।
0: वाओ,
1: अच्छा आज का दिन हम स्पेशली हम डॉग्स को डेडिकेट करते हैं कि डॉग्स हमारी लाइफ में कितने स्पेशल और कितने प्यारे होते हैं।
0: हाँ यार वो तो आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं आपको बताना चाहूंगी
1: और खुशी
0: दोस्तों,
1: आपको पता है, जब जब हमेशा ऐसा लगता है कि घर में कोई हमारा वेट करे या ना करे, पर वो जो डॉग्स होते हैं ना, हमेशा हमारा वेट करते हैं। जैसे हम आते हैं, एक बच्चे की तरह छुल कूद करके खुश होने लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आरजी खुशी ने यहाँ पर स्वागत किया है और मेरे साथ में प्राची भी है यहाँ पर। एंड दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत डे सेलिब्रेट किया जाता है, बॉन्ड विद योर डॉग डे। जी हाँ दोस्तों, एंड जो बिना कुछ कहे हमारी हर फीलिंग समझ जाते हैं, हम उदास हों तो हमारे पास आकर बैठ जाते हैं, बैठ जाता है, और खुश हों तो हमारी खुशी में उछल पड़ते हैं, जैसे अभी प्राची जी ने कहा। एंड दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान बदल जाए तो हैरान हो नहीं होती इंसान बदल जाए तो हैरानी नहीं होती, लेकिन एक डॉग हमेशा अपने मालिक का सच्चा साथी रहता है। क्यों प्राची?
1: बहुत ही आपने ये बिल्कुल अच्छी बात कही, और डॉग को देखकर जो फील, जो प्यार आता है, और डॉग डॉग के फेस पर आप देख सकते हैं जो आपके लिए प्यार डॉग के फेस पर मिलेगा, जो फेथफुलनेस मिलती है वो शायद इंसानों में भी नहीं मिलती आजकल।
0: बिल्कुल। मैं अभी आपने डॉग की बात की है तो मुझे ना हमारे घर के पास जो डॉगी रहते हैं उनकी मुझे याद आएगी, जो डॉग्स रहते हैं हमारे पास में घर के, तो जैसे ही मैं लाइक सुबह आती हूँ ऑफिस, तो उनको पता होता है मैं उनके लिए कुछ ना कुछ एवरी डे मैं उनको देती हूँ, चाहे बिस्किट हो या रोटी, जो भी कुछ मैं बनाती हूँ वो उनके लिए भी मैं लेकर जाती हूँ। तो जैसे ही मैं गेट ओपन करती हूँ ऑफिस आने के लिए, तो वो तुरंत दरवाजे पर भाग के आ जाते हैं। वो पता नहीं उनको कैसे पता होता है कि राइट टाइम मैं जब घर से बाहर आती हूँ कि वो ठीक राइट टाइम 10 बजे, मैं 9:30 में ऑफिस आती हूँ, तो वो उस समय गेट के बाहर ही होते हैं। और जब मैं उनके चेहरे को देखती हूँ ना, इतना मासूम सा चेहरा और इतनी प्यारी प्यारी आँखें हमारी ओर निहार रही होती हैं, तो मन एक अलग ही मतलब खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उनको कुछ खिलाती हूँ, वो ऑफिस तक मेरे पीछे पीछे आने के पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मैं उनको पीछे भेज देती हूँ कि जाओ मुझे काम तो करने दो।
1: कितनी खूबसूरत बातें आप बता रही हैं खुशी जी। और दोस्तों वैसे भी डॉग्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, ना ही हमारा स्टेटस चाहिए होता है उन्हें, ना ही हमारी दौलत चाहिए होती है, बस उन्हें तो हमारा थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है।
0: एग्जैक्टली।
1: और उनको थोड़ा सा भी पैम्पर करो तो कितना खुश होते हैं, डॉगीज का चेहरा कितना मासूम होता है।
0: बहुत ही। और आपने देखा है ना वो छोटे पेट्स जो होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं,
1: है ना? टॉय की तरह इतने प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे।
0: हाँ देखिए दोस्तों, ऐसी ही हमारी बातें चलती रहेंगी। मैंने आपसे कहा था कि इस शो में ना आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप भी हमें अपने मैसेज हमें कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और प्राची जो अभी मुरादाबाद से बाहर जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम FM मुरादाबाद को बिल्कुल भी मिस ना करें, हम सुनना चाहते हैं, तो वो कैसे सुन सकते हैं प्लीज़ बताइएगा।
1: दोस्तों इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और FM मुरादाबाद 89.6 ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां आप से हम करते रहेंगे बातें, लाती रहेंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट और लाती रहेंगे ढेर सारी अपडेट्स। जुड़े रहिए हमसे FM मुरादाबाद 89.6।
0: रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए, और अभी एक शानदार से गाना एंजॉय कीजिएगा। हम लौट कर आते हैं यहीं पर आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पर, एंड ये खूबसूरत सा गाना जो आपके दिल को सुकून दे जाएगा, तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद फिर से कनेक्ट होते हैं हम अपने श्रोताओं के साथ। क्यों प्राची?
1: बिल्कुल हम लौट के आते हैं बस थोड़ी सी देर में,
0: हाँ जी
1: आप कहीं मत जाइए।
0: हाँ, और रेडियो की सुई बिल्कुल भी मत घुमाइए प्राची। हम और क्या कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से, जुड़े रहिए, बने रहिए।
1: जुड़े और मुस्कुराना ना
0: हाँ,
1: भूलिए।
0: और अगर आप चाय पी रहे हैं ना या कॉफी पी रहे हैं तो हमारे लिए ही भिजवा दीजिएगा। ये तो हम मजाक कर रहे हैं एवरीवन, लेकिन हाँ आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, लेकिन आराम से, ठीक है? इतनी भी जल्दी में मत रहिए कि पता चले कि गर्मा गर्म ज्यादा ही चाय पी लिए। आपने पी है कभी प्राची ऐसे लाइक जल्दी में बहुत ज्यादा गर्म चाय पी ली हो फिर बाद में थोड़ा सा हुआ हो?
1: ऐसा तो मैंने कई बार मेरे साथ हुआ है, पर जब मैं चाय पी लेते हैं तब तो इतना पता नहीं चलता,
0: हाँ
1: पर फिर बाद में पता चलता है, तुम्हारी जीप थोड़ा जल
0: हाँ,
1: जाती है
0: बाद
1: तो।
0: में एहसास होता है, उस वक्त इतना नहीं होता है। राइट, तो चलो दोस्तों ये हमारी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, होती रहेंगी शो में, लेकिन सुनते हैं अभी एक ब्यूटीफुल ट्रैक जो बहुत ही प्यारा सा है और ये हम आप सभी को डेडिकेट करते हैं आज की इस ब्यूटीफुल शाम में।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक इस ब्यूटीफुल शाम में। खुशी एंड प्राची मेरे साथ है और इस समय प्राची बड़ा मुस्कुरा रही है। मैंने बोला आज क्या रीजन है जो इतना खुश है, कहती है कि मैम आज मैंने 2 समोसे खाए। मैं 1 समोसा खा रही थी लेकिन आज बहुत ज्यादा भूख लगी है तो 2 समोसे खाए। मैंने बोला अरे वाह क्या बात है। वैसे समोसों से मुझे याद आया, हम कॉलेज टाइम में जब जाते थे कॉलेज तो हमारे क्या होता था प्राची, मैं और मेरी जो फ्रेंड थी हम सब मिलकर ना अक्सर जब छुट्टी होती थी हम फ्री होते थे तो हमेशा सब साथ में बैठकर समोसे खाया करते थे। आपने कभी किया है ये चीज़ें बताओ मुझे?
1: ये तो मैंने बहुत बार किया है और सच में वो जो टाइम था दोस्तों के साथ, वो जो टाइम स्पेंड करना, समोसे खाना और बहुत सारी बातें करना,
0: गप्पी करना,
1: हाँ गप्पी शप्पी मारना, हाँ। वो तो सच में उसकी बात ही अलग थी। उन दिनों को हम आज भी मिस करते हैं
0: है ना? एग्जैक्टली। और कितनी जल्दी वो समय गुजर जाता है ना।
1: और अब हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं लाइफ में तो ऐसा लगता है कि वो टाइम कितना कम था हमारी जिंदगी में।
0: ऐसा लगता है कि उस पल में हम दोबारा चले जाएं
1: और वो मोमेंट सच में लाइफ में, अब ये ऑफिस वाली लाइफ में, जॉब लाइफ में कभी वापस ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे एग्जैक्टली। तो प्राची आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाह रही थी प्लीज।
1: जैसे कि हमारी श्रोता जानते हैं कि अभी हम मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था संडे,
0: राइट?

0: ना, आप सारी मदर्स हमें खुद को हमेशा आखिरी जगह मत देना, तुम भी उतनी ही जरूरी हो। घर संभालना खूबसूरत बात है, जी हाँ, घर संभालना खूबसूरत बात है, पर खुद को संभालना भी तो जरूरी है।
1: एग्जैक्टली यार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपने बोला है। कहीं ना कहीं मम्मा सारी चीज़ों में मतलब इतना व्यस्त हो जाती हैं, सबकी खुशियों में वो खुश हो जाती हैं, लेकिन वो खुद के लिए टाइम नहीं दे पाती हैं, जैसे अभी आपने कहा। और इसमें बड़ी खूबसूरत सी बात है कि खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। तो मैम,
0: खुशी जो हम देखते हैं कि जो मदर्स होती हैं, हमेशा वो अपने खुद को, जो भी उनके काम होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को हमेशा लास्ट में रखती हैं। कुछ भी हो, घर में कुछ भी बना होगा तो वो हमेशा सोचते हैं कि पहले बच्चे खा लें, फिर पापा घर से थक के आते हैं, फिर वो खा लें, कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा कम खा लेंगी,
1: हाँ, मुझे नहीं मिलेगा तो भी
0: तो
1: चलेगा।
0: भी चलेगा। तो ये सारी जो बातें होती हैं, पर मदर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कितनी स्पेशल हैं, अगर कितनी इम्पॉर्टेंट है उनका रोल। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरा घर जो है बिखर
1: बिखर
0: जाएगा,
1: जाएगा।
0: उनकी जो पूरी गृहस्थी जिसे वो संभालती भी आ रही हैं वो पूरी बिखर जाएगी। तो मदर्स, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप चहकती महकती हैं तब सच में हमारा घर घर लगता है, घर रोशन होता है आपकी मुस्कान से।
1: हाँ, बहुत ही खूबसूरत प्राची आपने कही हैं लाइनें। और अभी हम कुछ और भी आपसे जानना चाहेंगे। एक स्टोरी है जिससे आप बहुत ज़्यादा आपको प्रेरणा मिली है, तो मुझे बताइएगा वो कौन सी स्टोरी है, मैं भी जानना चाहती हूँ। और कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं, कुछ होंगे जो लाइक कहीं ना कहीं होता है ना लाइफ में, सबकी डाउनफॉल आते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लाइक लाइफ में आगे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं, उनको सही एक होता है ना कि डिमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
0: ना, कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें इंस्पायर करती हैं
1: हाँ
0: जब हमारा डाउनफॉल पीरियड चल रहा होता है। तो और स्पेशली जब कोई वुमेन होती है हमारी लाइफ में तो वो और भी ज़्यादा हमें इंस्पायर करती है।
1: या बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार। तो आपकी लाइफ में कौन है वो वुमेन, बताइए मुझे।
0: वो जो वुमेन है वो बहुत ही जानी पहचानी पर्सनालिटी है और उन्हें कौन नहीं जानता, वो है श्रद्धा कपूर।
1: अरे वाह, क्या बात है, श्रद्धा कपूर जी बहुत ही क्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर्स हैं।
0: हाँ, वो जो एक्ट्रेस है वो सच में उनकी मासूमियत और उनकी सादगी हमारा दिल जीत लेती है हमेशा। और हमेशा उनकी जो मूवीज आती हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा, उसमें उनकी एक्टिंग और जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। और पर दोस्तों, उनकी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा था जब उन्हें इतना बड़ा रिकग्निशन नहीं मिला था, इतनी फेम उन्हें नहीं मिली थी
1: जितनी
0: उससे
1: उन्होंने मेहनत की थी।
0: मेहनत की थी उससे पहले। दोस्तों, जो भी उनकी हिट फिल्म्स है उससे पहले भी उनकी लाइफ में एक डाउन डाउन पीरियड रहा है। बहुत सारे डाउनफॉल्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हैं और तब जाके वो इतना बड़ा मुकाम आज हासिल कर पाई हैं और हम सबके दिल पर राज कर रही हैं। आपको पता है खुशी, मैं आपको इन स्टोरी बताती हूँ।
1: बिल्कुल बताइएगा।
0: एक स्टोरी है इसके पीछे। वो जब श्रद्धा कपूर अपने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था,
1: अच्छा।
0: उन्होंने अपनी वो कॉलेज स्तर में अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर जब उन्हें फिल्म्स के लिए ऑफर आया और फिल्म्स और एक्टिंग का तो उन्हें बचपन से शौक था।
1: उनके फादर साहब इतने बड़े एक्टर हैं तो बेटी के अंदर भी
0: शक्ति
1: वो टैलेंट
0: कपूर,
1: आया है।
0: क्या
1: एग्जैक्टली,
0: वो क्या मल्टी टैलेंटेड पर्सन है सच में।
1: उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं, एक से बढ़कर एक हैं।
0: कितना
1: और
0: हंसाया है हमें,
1: हाँ
0: कभी विलेन बनकर, कभी बहुत ही स्पेशल स्पेशल रोल उन्होंने किए हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: तो अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें तो जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी बीच में छोड़ा, रिस्क लिया और उन्होंने फिल्म्स, उनकी दो फिल्म्स आई थी, लव का दी एंड एंड तीन पत्ती, तीन पत्ती, ये जो दो फिल्म्स थी इन्होंने ये कुछ खास नहीं कर पाई। ये दोनों ही उनकी स्टार्टिंग फिल्म थी और जो बैक टू बैक फिल्म्स काम नहीं करती हैं तो जो आर्टिस्ट होता है उसको बहुत,
1: हौसला
0: हाँ, बहुत डीमोटिवेट हो जाता है और डीमोटिवेशन

0: मिलने लगती है हमें अपने सराउंडिंग से, लोग ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पर फिर भी उन्होंने मेहनत की, अपने एक्टिंग स्किल्स अच्छे किए,
1: अपनी
0: और
1: कॉन्फिडेंस को उन्होंने डाउन होने नहीं दिया।
0: डाउन होने नहीं दिया। और दोस्तों, पर जब हम खूब मेहनत करते हैं और किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी हमें उससे मिला देता है। ऐसे ही श्रद्धा कपूर के साथ हुआ। फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद भी आशिकी टू के जो फिल्म निर्देशक थे मोहित सूरी जी, उन्होंने श्रद्धा कपूर पे भरोसा रखा और उन्हें आशिकी टू फिल्म ऑफर की। और दोस्तों, उसके बाद तो हम जानते हैं जो श्रद्धा की मासूमियत और जो उन्होंने डायलॉग्स कितने पूरी फील के साथ बोले थे, और कितने अच्छे से उन्होंने आरवी के रोल को
1: प्ले
0: प्ले
1: किया।
0: किया। और सच में आज भी वो मुझे आरोही ही लगती हैं, क्योंकि मैं तो सच में आरोही के किरदार में उन्हें देखने के बाद उनकी बहुत बड़ी फैन हो गई थी। दोस्तों, पर उस समय श्रद्धा कपूर को आशिकी टू ऑफर करना, ये सच में ये एक मतलब एक रिस्क होता है कि जो आर्टिस्ट दो फिल्म्स फ्लॉप दे चुका है उस पे भरोसा रखना, उसे इतनी बड़ी फिल्म देना। आशिकी टू एक बहुत बड़ी फिल्म थी उस टाइम, तो वह मोहित सूरी ने उन पर भरोसा रखा, उनके अंदर छिपे टैलेंट को पहचाना। और दोस्तों, आशिकी टू तो हम जानते हैं कि हम सभी के दिलों पर राज कर गई थी। और खुशी, आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट,
1: हाँ बताओ।
0: आशिकी टू की जो रिलीज डेट है, जो 26 और 27 अप्रैल के आसपास अपनी आशिकी टू की एनिवर्सरी डेट पर वो मोहित सूरी को थैंक यू बोलती हैं एवरी ईयर। तो ये चीज़ मतलब श्रद्धा इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हैं कि उन्होंने जब उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था,
1: तब
0: तब
1: सर
0: मोहित
1: ने उनको उन
0: हाँ
1: पर
0: तब
1: भरोसा
0: मोहित सूरी जी
1: किया।
0: ने उन पर भरोसा किया, उनके टैलेंट को पहचाना और उसके बाद उनका करियर करियर शाइन किया। तो इस वास्ते में ये भी पता चलता है कि वो कितनी डाउन टू अर्थ हैं, कितना जो उन जिन लोगों ने उनके लिए कुछ किया था उनके बुरे वक्त में, जब उनका डाउन फॉल पीरियड चल रहा था, उनका वो अभी भी थैंक यू करती हैं, उनके लिए थैंकफुल हैं। और बहुत ही मासूम और बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, और कितनी अच्छी फिल्म्स अब वो दे चुकी हैं, और क्या और वो हर तरह के किरदार को कितनी खूबसूरती के साथ करती हैं,
1: बखूबी निभाती
0: और
1: हैं।
0: उनकी एक्टिंग स्किल से तो अब हम सब लोग वाकिफ हो चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: सच में वो इंस्पायर करती हैं मुझे, जब मेरी लाइफ में कोई डाउनफॉल पीरियड आता है, जब लोग भरोसा नहीं करते कि शायद कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो तब जब मैं श्रद्धा की स्टोरी देखती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और उनकी सादगी ने तो हम सभी का दिल जीत रखा है।
1: बिल्कुल प्राची, मैं कहना चाहूंगी आपसे, कहते हैं ना कि सुख में तो हर कोई साथ देता है, पर दुख में जो साथ देता है वही सच्चा साथी होता है।
0: बिल्कुल
1: और हम दोनों तो साथ आपके बने हुए हैं श्रोताओं, लेकिन अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक का यहाँ पर टाइम हो गया है, तो कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। और आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए, और हाँ अपने संदेश भी हमें पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये खूबसूरत सा गीत यहाँ पर सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा, आप सभी के लिए।

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड इवनिंग आप सभी का। वेलकम है सुहानी सी शाम में, खुशी आपके साथ है। और मेरे साथ में यहाँ पर प्राची भी हैं, बहुत प्यारा मुस्कुरा रही हैं। और ये मुझे बोल रही थी अभी कि खुशी जी मुझे जाना है। मैंने बोला क्यों जाना है, बोलती हैं कि आज मेरे को एक वेडिंग में जाना है और आपको पता है कि लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। कहती हैं कि मुझे 2 घंटे लग जाते हैं सजने संवरने में। हाय
1: वैसे खुशी जी, आज मुझे थोड़ा साड़ी पहननी है और साड़ी भी पहली बार पहन रही हूँ।
0: अच्छा, फर्स्ट टाइम पहन रही हो?
1: थोड़ा तो आपको पता है कि टाइम तो लग ही जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और साड़ी
0: लग
1: भी
0: है।
1: मतलब हम जैसे न्यू गर्ल्स के लिए तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है।
0: एग्जैक्टली यार, उसको संभालना। मम्मा पूरे दिन साड़ी पहनकर घर के सारे काम कर लेती है और हम फंक्शन में भी नहीं जा रहे हैं। देखो,
1: हमसे 1-2 घंटे भी हैंडल नहीं हो पाती।
0: हाँ, तो साड़ी पहनना अपने आप में भी एक बड़ा टास्क है यार।
1: तो अभी इसलिए खुशी।
0: अच्छा
1: मुझे
0: ये बताओ
1: लगेगा।
0: प्राची, अब शादी में जाओगे तो क्या क्या खाओगे?
1: मैं
0: सबसे पहले, आप शादी में अगर जाती भी हो एंड आज जाओगी भी, तो सबसे पहले क्या खाओगी? क्या आपके मन में चल रहा है अभी इस वक्त?
1: टू बी ऑनेस्ट, आपको शायद बहुत बोरिंग लगे खुशी जी, पर मैं सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ। क्योंकि लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है कि
0: नहीं,
1: आप
0: नहीं।
1: सबसे पहले खाना खाती हो जाके, पर मैं खाना खाती हूँ और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं मैदा ये सब नहीं खाऊं। पर आपने एक बात नोटिस की है खुशी,
0: हाँ,
1: कि
0: चलनी।
1: हम जो होते हैं, और मैं भी अक्सर पहले ऐसा किया करती थी कि हम अपनी प्लेट्स में हम सारा सामान ले लेते हैं, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की सब्जियां होती हैं,
0: वैरायटीज जो भी
1: सब
0: फूड्स
1: कुछ
0: होता
1: हम
0: है,
1: ले
0: फूड
1: लेते
0: होता
1: हैं,
0: है।
1: सब कुछ ले लेते हैं हम। पर उसको लेते इतना सारा है, पर उसको हम खा कितना पाते हैं?
0: थोड़ा
1: 2-3 bites।
0: या
1: तो इससे जो हम फूड को जो वेस्ट करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर फूड वेस्ट होता है तो वो शादी फंक्शंस में ही फूड वेस्ट होता है, और हमें इस बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, और हमें अपने श्रोताओं को भी अवेयर करना चाहिए कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल श्रोताओं, शादियों में हम लोग जाते हैं अक्सर, तो देखते हैं इतना खाना वहाँ पर वेस्ट होता है, इतना खाने को वहाँ पर बर्बाद करते हैं लोग, इतना प्लेटों में भर लेते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप 10 चीज़ें खाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का टेस्ट लीजिए। उससे खाना भी ख़राब नहीं होगा और आपका पेट भी भर जाएगा और आप हर चीज़ का आनंद भी ले पाएंगे।
1: बहुत ही आपने अच्छी बात बताई खुशी जी हमें। और साथ ही साथ आपको पता है, जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं खाने के साथ साथ, क्योंकि जो खाना बनता है वो काफ़ी सारी चीज़ों से बनता है, और कहीं ना कहीं जब खाना हम वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें वेस्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेट जो हम लॉस कर रहे हैं वो अपने एनवायरमेंट का लॉस कर रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खाना वेस्ट नहीं हो। और जैसे कि हमें हमेशा से बताया जाता है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना
0: एक वो
1: चाहिए,
0: लाइन भी है, मुझे याद आई
1: अन्न का
0: प्राची,
1: अपमान हमें नहीं
0: नहीं
1: करना
0: करना
1: चाहिए।
0: चाहिए कि उतना ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में।
1: बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमारे साथ साझा की है खुशी।
0: हाँ, तो मैंने आपसे बताया भी है। और देखो ना प्राची, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस खाने को आप खराब कर रहे हैं, किसी भूखे का भी पेट भर सकता है। तो आप अगर फंक्शन में जाते हैं या फिर आपके साथ में कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें
1: हमें
0: सिखाना
1: समझाना
0: बहुत
1: चाहिए
0: ज़रूरी है,
1: उन्हें,
0: क्योंकि बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को गाइड
1: हाँ
0: करना।
1: उन्हें शेप देना, आप उन्हें जैसा बताएंगे वो उस तरह से
0: वो
1: शेप करेंगे अपनी हैबिट्स को,
0: एग्जैक्टली
1: कि उन्हें
0: राइट।
1: कितना लेना है कितना खाना है।
0: हाँ, तो इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखें। और अभी हमारी जाने का भी समय हो गया, जैसे आपको बताइए कि प्राची जी आज शादी में जाने वाली हैं सज सवर के, और प्राची जी ने कहा है कि अब हमारे चलने का भी वक्त हो गया। लेकिन जाते जाते दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, एंड पानी पीते रहें। और आगे प्राची बताएंगी क्या करना है। प्राची बताइए, टेल मी।
1: और दोस्तों प्लीज़ आप मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है।
0: और जब जब आप मुस्कुराएंगे तो खुशी को याद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ,
1: और
0: प्राची कुछ
1: दोस्तों
0: और बात।
1: बिजली भी बचाइए, क्योंकि आजकल ये एनर्जी क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिजली बचाइए और
0: जल बचाइए।
1: आप पेड़ लगाइए दोस्तों, क्योंकि हमें पेड़ लगाने की आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी गर्मी हो गई है, कितना मौसम के पैटर्न में कितना चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं ना कि मौसम कितने बदल रहे हैं खुशी। आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी आपने अप्रैल के टाइम, अप्रैल मई में इतनी बारिश देखी है?
0: नहीं नहीं नहीं
1: बारिश हो रही है, कभी सर्दी सी लगती है, तो कभी हमें एकदम गर्मी सी
0: बहुत
1: लगने,
0: भयंकर गर्मी लगने
1: तो
0: लगती
1: ये जो
0: है।
1: मौसम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, अगर इससे हमें कोई बचा सकता है तो पेड़ हमें बचा सकते हैं। और दोस्तों, जो बड़े विशाल पेड़ हैं उन्हें काटने से रोक के, क्योंकि जो वो हमें जितना प्रोटेक्ट वो हमें कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को जो चीज़ें वो दे सकते हैं, वो अभी कुछ छोटे पेड़ लगा लगा कि हम जो आजकल रील्स बना के ऐसा दिखाते हैं कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, पर दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म नहीं होती। हमें सबसे ज़रूरी ये भी करना है, छोटे छोटे पेड़ तो लगाने ही हैं, पर साथ ही साथ हमें बड़े पेड़ों को काटने से बचाना है, क्योंकि जो विशाल वृक्ष होता है उसकी छाया, जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है हमारे लिए, वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट और ये जो मौसम में जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं उनके लिए। अगर हम इसी तरह से पेड़ काटते रहे तो गर्मी जो है, हमारी जो अर्थ है वो एकदम आग का गोला बन जाएगी।
0: हाँ जी श्रोताओं, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आप पेड़ों को लगाइए और उनकी अच्छे से देखभाल भी कीजिए, और समय समय पर मैं कहती हूँ जो आपके घर में प्लांट हैं, जो आपने पौधे लगाए हैं, उनको भी पानी देते रहें, क्योंकि जितनी आवश्यकता हमें है उतनी ही आवश्यकता उन पेड़ पौधों को भी है।
1: बहुत ही आपने अच्छी बात बताई है हमारे लिसनर्स को।
0: तो दोस्तों, अब हमारी ये तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, और अब हमारे जाने का बिल्कुल भी मन तो नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राची कह रही है कि मेरा भी मन नहीं है, लेकिन शादी में जाना पड़ेगा।
1: दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे,
0: हाँ जी, बस आप मुस्कुराते रहिए।
1: गुनगुनाते रहिए, और हमारी FM मुरादाबाद 89.6 पे आप हमारे साथ हमें रोज सुनते रहिए।
0: और बने रहिए, चिपके रहिए, और हाँ अपने घर के कार्य भी करती रहिए। देखिए, हम आपको काम को नहीं रोकेंगे, है ना। पता चला कि हम तो शादी में जाकर आराम से खाना खा रहे हैं और आप लेट हो गए हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, अपने काम भी कीजिए और मुस्कुराइए, और FM मुरादाबाद सुनते रहिए। तो प्राची, अब अपने श्रोताओं को बोलते हैं बाय बाय, टेक केयर।
1: और दोस्तों FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए।
0: और स्पेशली सीनियर सिटीजन का भी ख्याल
1: हाँ,
0: रखें,
1: और दोस्तों जो हमारे आसपास जो ये
0: पशु
1: जानवर
0: पक्षी
1: हाँ
0: हैं, जानवर
1: हैं,
0: हैं,
1: उनका
0: उनका भी
1: भी
0: ख्याल
1: ध्यान
0: रखना बहुत
1: रखिए।
0: जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: गर्मी बढ़ रही है, उनके लिए पानी रखना और दाना रखना भी मत भूलिए अपनी छतों पर।
0: बिल्कुल, जैसे अभी जो गाय हैं रोड पर रहती हैं, उनके लिए भी पानी का एक बड़ा सा, रहते ही ना चीज़ें कुछ ऐसी व्यवस्थित बना दीजिए, उसमें पानी भर के रख दीजिए। बड़ा टब होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसमें वो पानी भर कर रख सकते हैं। जो पशु हैं जो रोड पर रहते हैं, उनकी भी प्यास बुझ जाए, वो भी पानी पी सकें, क्योंकि हम अपना ख्याल तो रख लेते हैं।
1: हम बोल के अपनी बातें बता सकते हैं, पर वो तो बोल भी नहीं सकते, तो हमें उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल श्रोता, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम दोनों लड़कियों ने की हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। और अब
1: और दोस्तों, अगर जैसे अगर आपके पास भी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी, किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी जो आपको इंस्पायर करती है, तो दोस्तों आप हमें लिख भेजिए, क्योंकि हम उसे सुनाएंगे अपने श्रोताओं को अपने शो में। और दोस्तों आप चाहें तो हमें लिख कर भी भेज सकते हैं, या फिर आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में एक वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपका वॉइस नोट हम भी सुनने के लिए तैयार हैं।
1: दोस्तों आप हमें सुनते हैं, अब हम आपको सुनेंगे।
0: ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन,
1: बाय बाय।

0: खड़ा होकर अपना योगदान दे।
1: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
2: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल खरीद, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
3: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
4: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: होंगे। ये कॉरिडोर जसोला, अपोलो, लाजपत नगर, एनएसआईसी ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा और आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 35 यात्रियों की क्षमता वाली दो हाइड्रोजन फ्यूल बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें जीपीएस ट्रैकिंग और सीसीटीवी की सुविधाएं होंगी। ये बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेंगी। डीएमआरसी के अनुसार ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब यात्री रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच सुगम और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर, लिफ्ट, मूविंग वॉक, सीसीटीवी और पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। कल से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के ईंधन, आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री की 7 अपीलों से प्रेरित है।
2: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
2: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
0: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर लिया गया है। श्री सूद ने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के साथ सीधा संवाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के सभी 28 शिक्षा जोन में कुल 11 ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। अगला ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। श्री चहल ने बताया कि कल से एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस सेवा शुरू होगी, जिसे सोमवार से 14 अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट दी जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए लोगों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और यातायात कम करने के लिए नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में श्री वाही आज मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज डॉ बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संधू ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो एक शैक्षणिक यात्रा के समापन और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जन सरोकारों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और तकनीक के माध्यम से विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। श्रीमती गुप्ता ने छात्रों से करुणामय बने रहने का अनुरोध किया।
4: 14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ संपन्न हो, लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाला। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है। इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कम्पैशनेट भी रहिए।
0: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
5: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की

0: गोलियां बरामद की जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद और हापुड़ में सक्रिय ये गिरोह स्कूटी की मदद से इन साइकोट्रॉपिक दवाओं की सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना वैध प्रेस्क्रिप्शन और दस्तावेजों के इन दवाओं की अवैध सप्लाई और वितरण कर रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं संपत्ति ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी बरामद की है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रानी बाग इलाके में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रानी बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। बाहरी जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने देश भर में पिछले 24 घंटों में 14 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को आज दिल्ली के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इस अभियान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

है आम बोलचाल में भाषा से थोड़ा ऊपर उठकर परिनिष्ठित शब्दावली का उपयोग करते हुए लेखक पत्रकार अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भाषा को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से वो निश्चित दायरे का अतिक्रमण करते हुए एक नया विस्तार प्राप्त करती है। कन्नड़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एस एल भैरप्पा जी ने अपनी

0: बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है, मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा खाऊंगा मेरे आराम मिल जाएगा। पर वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग,
0: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा।
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, a new thing, something new thing is.
0: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
0: हाँ जी
1: वो अक्यूट में आता है।
0: ओके।
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते तीन महीना तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का दर्द, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
0: ओके।
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
1: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जांपल आईटी प्रोफेशन हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहने पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल, तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन, बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पांव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पांव में झंझनाहट होना, कमर से पांव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है, थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
0: ओके मैम, ये तो हमने बात के लिए सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
1: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है, तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं, वो देने के बाद में हम आते हैं जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर, उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी, आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता, वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
0: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
1: बिल्कुल भी नहीं है
0: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
1: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं, आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं, जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
0: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
1: बिल्कुल,
0: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है, तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
1: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
0: जी,
1: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई वो सर मेरे दिमाग पे आओ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं, ब्रेन में क्या हो रहा है ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना आपको अच्छा लगता है तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा व्हाटएवर द वर्क यू लाइक,
0: ओके
1: ऐसे।
0: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
1: डेफिनेटली,
0: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
1: बिल्कुल, क्या होता है कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, एआई आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेनजी है, जेन अल्फा है,
0: बीटा है,
1: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल,
1: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
0: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
1: बीच में भी हम देखते हैं,
0: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है,
1: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
0: करेक्ट, तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
1: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है, अगर और फिर आते हैं आपके साइंस, जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन, सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर, और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर निधा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निधा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
0: काम पे
1: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी, वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है,
0: करेक्ट,
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके, कभी कभी क्या होता है हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है,
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
0: तो मतलब ऐसे
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे, और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
0: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है,
0: अच्छा।
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: ओके,
1: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है, तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
0: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
0: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके, मैम कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है, मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
0: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं, तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
0: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
1: बिल्कुल है,
0: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
1: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
0: ठीक है,
1: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
0: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
0: ठीक है
1: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है, या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि तीन महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है,
0: ठीक है। ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
1: देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
0: जी।
1: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है
0: मैम। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
1: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है वो पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
1: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जी, जो जी, बैठे रहने का
0: जी, जी,
1: काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं या फिर फोन में लो बच्चे
0: जी,
1: बच्चों
0: जी,
1: को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल
1: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
0: फोन
1: अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता, या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है वो शॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है,
0: ओके,
1: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
0: ओके सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
1: बिल्कुल दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
0: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
1: AI
0: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
1: नहीं सर दर्द, देखिए गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा, और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत, मैम थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर्स
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
6: मैं हूं भावना, और आज चर्चा होगी हमारे बीच में आभा कार्ड को लेकर। आज आपको बताएंगे आशीष आभा के बारे में। आशीष बताइए।
5: बिल्कुल भावना, अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आज मैं और मेरी सहयोगी भावना, हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आभा की। आखिर ये आभा है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे और कौन कर सकता है? भावना, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
6: जी बोलिए।
5: अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास अपने बीमार होने के बाद में जाती हैं, तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है?
6: पहला सवाल आशीष तो यही होता है कि ये बीमारी आपको कब से है, और क्या इसके पहले कहीं ये बीमारी का इलाज कहीं करवाया है कि नहीं करवाया है। तो अगर हमने इलाज करवाया होता है तो हम पर्चा दिखा देते हैं उनको, प्रेस्क्रिप्शन, और अगर नहीं कराया होता है तो बता देते हैं कि नहीं कराया है।
5: कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास शायद पर्चा खो गया हो, फट गया हो या नहीं मिल रहा हो, और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पुरानी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
6: हमारे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार कि मान लीजिए कभी हम इलाज कराने गए और 2-3 साल पुराना पर्चा, कहाँ कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता है, तो डॉक्टर से बस ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कभी करवाया था, लेकिन हमारे पास उसका कोई
5: प्रमाण नहीं हो पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता या ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते कि हाँ हमारा इलाज चला तो ऐसे ही चला था। दरअसल मैं ये बातें इसलिए भी पूछ रहा हूँ भावना, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय ही इस बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई जो हमारे या बहने हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों को फेस किया होगा जब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे पूछते हैं लेकिन वो समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसी के निराकरण के लिए हमारे पास है आभा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आभा क्या है।
6: बिल्कुल आशीष,
5: तो आभा मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताऊं कि दरअसल ये 2021 में सरकार की तरफ से लागू किया गया एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, या अगर आप उसमें शामिल हैं या अपना इलाज करा रहे हैं, तो सबको आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम किसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा हमारी जरूरत पर हमको काम आ सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़े, ठीक ऐसे ही आभा है। जानती हैं कैसे?
6: कैसे?
5: दरअसल आभा का मतलब होता है ABHA, आभा। ये एक तरीके की हेल्थ आईडी है। आभा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है
6: जी।
5: तो ये हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी, और ये एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है।
6: तो अकाउंट क्या आशीष, ये कोई खाता है?
5: हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे ये एक यूनिक आईडी है, जैसे हमें आधार कार्ड हमारा होता है तो आधार हमारी एक यूनिक आईडी है।
6: अच्छा।
5: जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ठीक ऐसे ही आपकी एक हेल्थ आईडी बना दी जाती है, एक हेल्थ खाता बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी आपकी जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो उस खाते में आप दर्ज कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं, उनके लिए बहुत काम की जानकारी होगी?
6: आशीष, ये बहुत काम की चीज है, लेकिन आप इसके विषय में और भी बताएं जिससे हमारे श्रोता इसको सुने और समझें।
5: बिल्कुल, हम इस पर जरूर बताएंगे कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक आम जानकारी जो आभा से जुड़ी है वो मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक यूनिक हेल्थ आईडी है जिसमें आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके इसे जनरेट किया जाता है। 14 अंकों का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आभा का
6: जी।
5: और आभा कार्ड की, जैसा आपने कहा और पूछा भी है, तो कई सारी विशेषताएं हैं और इसके कई सारे लाभ भी हैं जो लोगों को बिना किसी परेशानी के भावना हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने में मदद करता है।
6: मतलब
5: ये कि जैसे आपको कोई भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए या आप किसी भी स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल कर रही हैं, तो सारी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं आभा आईडी में दर्ज हो सकती है। अब मैं थोड़ा आपको खुलकर बताता हूँ, खुलकर यानी विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आभा कार्ड, जिसे मैंने पहले बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है लोगों की, जो एक यूनिक 14 अंकों का नंबर है जिसे भारत में हेल्थ केयर एक्सेस को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के हिस्से के रूप में ही आभा हेल्थ कार्ड आपको देश भर के हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और उसको शेयर करने की अनुमति देता है।
6: मतलब अब आप समझ पाएं? हमारे पास पर्चा नहीं भी है तो भी अगर कहीं गुम हो गया हमारा पर्चा, तो ये जो आभा कार्ड है उसका प्रयोग करके हम इसको अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
5: बिल्कुल,
6: जानकारी हासिल कर सकते हैं।
5: तो आभा कार्ड के मोटे तौर पर जो लाभ है, पहले मैं वो बता देता हूँ।
6: हाँ, बताइए।
5: पहला, आसान हेल्थ केयर एक्सेस है आपको। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके में उन कार्यक्रमों में भी कहीं नामांकन करना है तो वहां भी आपको ये हेल्प करता है। स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कहीं से कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से कराया है, तो आप अपने आभा कार्ड में अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपकी एक ये भी जानकारी आपके पास रहेगी कंबाइंड तौर पर। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका लगातार बन रहा है, जिसको आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो उससे शेयर कर सकती हैं।
6: तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है आशीष, कि जैसे कि आपने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने कहीं कराई है, स्वास्थ्य बीमा कराई है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो इसका पैसा उसके अकाउंट में चला
5: जाएगा?
6: पैसे
5: से मतलब अभी नहीं है। देखिए, वो तो जाहिर है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आप अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स देते ही हैं पॉलिसी लेते समय, ठीक है। और पॉलिसी की जब मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी हैं हेल्थ सेक्टर की जिसमें मैच्योरिटी के बाद तो कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी लगती है तो उस समय आपका इलाज उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाता है, यानी कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। जो पैसा खर्चा आता है वो सारा बेयर होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं अलग अलग जो पॉलिसी सेक्टर में हैं कंपनियां, जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी आपको अमाउंट

0: करने हैं या सरकार देगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी
1: दीजिए। नहीं, इसमें कोई ऐसा पैसा वाला हिसाब किताब नहीं है भावना। दरअसल ये एक तरीके का मेडिकल या हेल्थ अकाउंट है, स्वास्थ्य खाता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपको समझाता हूँ कि आभा का अर्थ क्या है, पहले इसको समझ लें। दरअसल आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जैसा मैंने अभी बताया, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत बनाई गई एक यूनिक हेल्थ आईडी है। आभा कार्ड एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है जो किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को समेकित करता है।
0: अच्छा।
1: जिससे हेल्थ केयर सेवाओं का आसानी से एक्सेस मिलता है, यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर की सेवाएं हैं उसमें आपको एक सही एक्सेस मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है। और ये आभा हेल्थ कार्ड यूजर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ साथ अपने हेल्थ डेटा को भी आसानी से शेयर करने की अनुमति देता है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। और इससे कहीं ना कहीं एक बेहतर समन्वय और पर्सनलाइज्ड केयर सुनिश्चित होती है भावना। और हेल्थ केयर की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आभा का उद्देश्य भारत में समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और कुशल बन जाती है। अब एक सवाल और भी आता है, ये तो हो गया कि आभा क्या है, लेकिन सवाल ये है कि आभा क्यों बनवाएं, यानी कि सवाल ये है कि
0: आप कैसे बनवाएं।
1: हाँ, सवाल ये है कि आभा आईडी क्यों बनाएं। ठीक है,
0: कि हमारे जो श्रोता हैं अगर इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी कर पाएं। हाँ। कि क्यों बनवाएं और कैसे बनवाएं, कहाँ अप्लाई करें।
1: बिल्कुल, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में दरअसल हमने देखा है कि हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म लगभग आज की डेट में डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटल हम अगर स्तर पर देखें या ई गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं डिजिटली बदलाव कर रहे हैं। तो भारत के तेजी से बढ़ते हुए जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसका हिस्सा बनने के लिए अपनी आभा हेल्थ आईडी बनाना बहुत जरूरी है। समझ रही हैं आप?
0: हाँ, समझ।
1: जैसे जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है, देश की सरकार का या विभागों का या अलग अलग महकमों का, जहां पे लोगों को फायदा होता है योजनाओं से, उससे जुड़ने या उसका हिस्सा बनने के लिए आपकी आभा हेल्थ आईडी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टरों के साथ साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने और शेयर करने का सबसे आसान तरीका देता है, जिससे एक तो तेज डायग्नोसिस हो सकेगा और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो भावना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपके पास आभा आईडी होना जरूरी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़े और कारण बताएं कि डिजिटल हेल्थ केयर के लिए आभा कार्ड लोग क्यों चुने।
0: अच्छा ठीक है, आपने पूछा कि आभा कार्ड क्यों चुने, तो आशीष हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो आभा आईडी है, एक ही जगह पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे और जो टेस्ट रिपोर्ट है वो एक ही जगह पर स्टोर करती है।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: यानी कि ये जो तीनों चीजों की जानकारी है वो हमारी आभा आईडी में एक ही जगह पर आ जाएगी,
0: एक ही जगह पे स्टोर कर लेती है।
1: ठीक है,
0: इस वजह से ही भी आभा आईडी चुने। और दूसरा कारण ये है, और दूसरा ये कि डॉक्टर तुरंत आपकी मेडिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आशीष, और पेपर वर्क और प्रतीक्षा समय को कम कर सकते हैं।
1: मतलब ये हुआ कि कहाँ, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे पेपर होंगे तो हमको अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें हमारा समय ज्यादा जाएगा, तो कम से कम वो समय बचेगा और डॉक्टर एक ही जगह पर जल्दी से वो सारी हिस्ट्री समझ जाएंगे। ठीक है।
0: और दूसरा ये कि पॉलिसी के जितने भी लाभ हैं वो और कैशलेस ट्रीटमेंट तक आसान एक्सेस के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा विवरण को लिंक करें।
1: अच्छा, मतलब जो कैशलेस इलाज मिलता है, अगर वो आप पाना चाह रहे हैं और आपने अगर इसको लिंक कर लिया है अपनी आभा आईडी से, तो यानी कि आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
0: बिल्कुल मिलेगा।
1: ओके।
0: और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने और सरकारी हेल्थ केयर की स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का उपयोग करें।
1: तो श्रोताओं, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी भावना जी ने बताई, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक

0: से स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं अगर वहां पर इसका विकल्प रखा गया है तो। और सरकारी हेल्थ केयर स्कीम जितनी भी चल रही हैं उसका लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आपको आभा हेल्थ कार्ड बना लेना चाहिए। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं भावना?
1: लाभ तो अभी आपने बताया आशीष, कुछ लाभ तो आपने बताया कि आभा सुविधाजनक एक्सेस हो सकता है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी आसान पहुंच हो सकती है, आयुष हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा हो सकती है और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का आसानी से रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है आशीष।
0: सही कहा भावना आपने। तो कुल मिलाकर आभा कार्ड चुनकर आप कुशल, पेपरलेस और कनेक्टेड हेल्थ केयर सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे मेडिकल विजिट अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाती है। और जैसा कि लाभ के बारे में चर्चा चल रही है, तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी करने का सुविधाजनक एक्सेस है आभा, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान एक्सेस है आभा। यहाँ तक कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, जिसको HPR बोलते हैं, उस तक भी आसान एक्सेस है आभा, और आयुष हेल्थ केयर सेवाएं सुलभ हो जाती हैं आभा हेल्थ ID से। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा मिलती है आपको, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं आप लोग, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है आभा, 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देता है जो हेल्थ केयर सिस्टम के भीतर एक ही पहचान आपकी स्थापित करता है।
1: आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपके मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की सुविधा प्रदान करता है।
0: इसके अलावा एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की भी सुविधा है, यानी कि आभा हेल्थ आईडी सिस्टम आपके अकाउंट को आवश्यकता के अनुसार एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की सुविधा देता है, और ये नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि आप अपनी पसंद और अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी को मैनेज कर सकते हैं।
1: और इसके साथ ही आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको लाभार्थियों को जोड़ने, आश्रितों या परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। यह सुविधा आपके प्रियजनों की स्वास्थ्य जानकारी की एकीकृत देखभाल को सपोर्ट करती है और उनकी निगरानी को आसान बनाती है।
0: अरे वाह, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री का एक्सेस भी है आभा। दरअसल कार्ड के साथ आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस हेल्थ सुविधा रजिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल जाता है। देखिए बहुत सारे लाभ हैं। वैकल्पिक दवा का एक्सेस मिल जाता है, जैसे आयुष सेवाओं के साथ में आभा हेल्थ आईडी कार्ड का इंटीग्रेशन अगर हो तो वैकल्पिक दवाओं के विकल्पों तक भी आपकी पहुंच हो जाती है। इतना ही नहीं, सहमति आधारित डेटा शेयर कर, यानी कि अगर आप चाहें तो उस आईडी के जरिए आप अपना डेटा जिसको चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति देता है आभा। भावना, क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगी?
1: हाँ आशीष, हम विस्तार से बता रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जा सके, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रावधान देखभाल की निरंतरता को सपोर्ट करता है और आपके स्वास्थ्य हितों की भी सुरक्षा करता है।
0: क्या बात है, यानी कि आभा सभी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें जो बीमा क्लेम वाली दिक्कत आती है लोगों के सामने, अगर आप आभा के साथ जुड़े हैं तो बीमा क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो तेज हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तक कि एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि आभा कार्ड क्या बच्चों के भी बनाए जा सकते हैं?
1: हाँ आशीष, चाइल्ड आभा कार्ड के नाम से बच्चों के भी आभा हेल्थ आईडी सिस्टम बच्चों तक पहुंचता है, जिससे चाइल्ड आभा कार्ड बन सकते हैं। यह शुरुआती एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड को कम उम्र से व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट किया जा सके, जिससे लगातार और सूचित बाल रोग देखभाल में मदद मिलती है। आशीष, अब आशीष एक प्रश्न आ जाता है मेरे मन में, यही से।
0: क्या पूछिए?
1: वो ये कि आभा हेल्थ कार्ड अकाउंट किसे बनाना चाहिए?
0: हाँ, ये बहुत अहम प्रश्न है भावना, आपने जो पूछा है। दरअसल एक्सेसिबल हेल्थ केयर जितने भी लोग चाहते हैं, सभी लोगों के लिए आभा कार्ड बनाना बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। जैसे क्रॉनिकल जो डिजीज हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोग, या जिन्हें बार बार मेडिकल आवश्यकताएं पड़ती हैं, ऐसे लोग, या फिर वो लोग जो अपने हेल्थ केयर अनुभव को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वो आज इलाज करा रहे हैं, फिर वो सही हैं, कई महीनों कई सालों तक वो सही हैं, फिर कुछ बीमारी आई, फिर उन्होंने उस चीज में सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए, फिर वो सही हो गए कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में, फिर कोई बीमारी आई, फिर उन्होंने अपना इलाज कराया और रिकॉर्ड दर्ज हो गया, तो यानी कि उनके पास कई साल का डेटा भी होगा। तो ऐसे लोग भी अपना आभा कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इसके विस्तार रूप से समझने की है, तो देखिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक नामांकन लाभ को आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आभा कार्ड बनाकर आप हेल्थ केयर सेवाओं का सही समय पर एक्सेस पा सकते हैं, ताकि समस्याओं को आगे बढ़ाने से पहले ही उनकी आवश्यक देखभाल आपको मिल जाए। और ये सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य प्रबंधन को भी बढ़ाता है और दीर्घकालिक परिणामों में सुधार भी करता है। और भावना, इसके अलावा आभा कार्ड जो है ना, वो हेल्थ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर, जैसे यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श कर सकता है या ले सकता है, और अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है, और ये बड़ा आसान हो जाता है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना, और जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना या फिर अपॉइंटमेंट मैनेज करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ तक कि भविष्य के हेल्थ केयर लाभों के लिए भी आप तैयार हो जाएं अगर आपके पास आभा कार्ड है, क्योंकि कार्ड होने से व्यक्ति भविष्य में हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये एक उभरता हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं आपको। आभा कार्ड बहुत सारे हेल्थ केयर सुविधाओं में मरीज के डेटा को लिंक करके एक तरीके से बड़े ही आकर्षक हॉस्पिटल अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि एकीकरण हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर जानकारी प्राप्त करने वाले निर्णय और बेहतर रोगी देखभाल की सुविधा मिलती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। अब लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे और आ जाता है।
0: जी, पूछें।
1: पूछें कि ये आभा कार्ड का उपयोग कैसे करें?
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है भावना। दरअसल आभा हेल्थ कार्ड, जैसा मैंने पहले बताया कि कई तरीके के लाभ देता है, जो मेडिकल सेवाओं को चुनने से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हिस्ट्री जो मैंने बताया, HPR, इसका एक्सेस करें। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर HFR का उपयोग करें। वैकल्पिक दवा विकल्प आप देख सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब आपने जो एक सवाल पूछा कि इसका उपयोग कैसे करें, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आभा कार्ड पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR को आप ऑनलाइन मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी आईडी बनती कैसे है,
1: और ये भी आप चरणबद्ध तरीके से बताइएगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप पहले तो ये समझ लें कि आभा आईडी पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस बनाने के लिए कुछ चरण हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप आभा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS पे हमको आभा ऐप जो है वो प्रोवाइडेड है। सरकारी आईडी का प्रयोग करके रजिस्टर करें और पोर्टल की तरफ से पूछे गए जितने भी विवरण हैं वो उसमें सब भर दें आप, ठीक है। अपने आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक। अपने मोबाइल नंबर पर शेयर किए गए OTP के साथ नंबर को सत्यापित कर दें, ठीक है। OTP सत्यापित जैसे ही होगा, ये प्लेटफॉर्म आपका PHR एड्रेस जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका PHR एड्रेस जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल एक ये आ जाता है कि आभा कार्ड के लिए आखिर अप्लाई कैसे करें? है ना? क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक पोर्टल पर आए हैं,
1: अभी उसका ऐप डाउनलोड करके चीजें हमने
0: जी
1: उसको अपने मोबाइल पे ले लिया है, लेकिन अब उसको क्या करें कि ऑनलाइन आभा कार्ड अप्लाई कैसे करें?
0: बिल्कुल। तो ये भी समझने वाली बात है। तो आभा एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे कैसे करें या इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है भावना?
1: आशीष एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा,
0: पूछिए।
1: कि आभा जो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपना पर्सनल हेल्थ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा।
0: हाँ, जो मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका, वो आपको जैसा मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे,
1: PHR एक एड्रेस है पहले, वो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम आभा ID के लिए अप्लाई कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तभी तो उसमें आपसे OTP मांगी जा रही है। जब आप OTP डालकर अपना फोन नंबर सत्यापित करते हैं तो आपका PHR जो है, PHR एड्रेस वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब जो आपने पूछा है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें इस कार्ड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड रेडी रखें या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखें। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आप आभा हेल्थ कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, तो पहला ये कि आधार कार्ड का उपयोग करके, है ना, और दूसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके। तो अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं आभा नंबर पाने के लिए, ठीक है, तो एक लिंक है आभा ऐप का जो मैं पढ़ भी देता हूं, और अगर हमारे श्रोता भाई बहन जो हैं अगर वो जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति मौजूद होते हैं वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। यदि आप खुद इंटरनेट के जानकार हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप पर या अपने फोन पर ब्राउजर में जाके अगर वो लिंक डालेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लिंक मैं जबानी तौर पे भी बता देता हूँ,
1: जबानी तौर पे आशीष बहुत ही आराम से पढ़िएगा।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा
1: करके आप
0: जी, ताकि लोग उसको सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। लिंक कुछ ऐसा है, तो भावना मैं जबानी तौर पर भी एक बार अपने श्रोताओं को ये बता देता हूँ कि वो लिंक क्या है, ताकि अगर वो लोग कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है
1: बहुत आराम से आशीष बताइएगा।
0: तो लिंक, अगर आप आधार कार्ड के जरिए अपना आभा नंबर पाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो है http:// दो बार लगाना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करना है ABHA आभा, डॉट लगाना है abdm.gov.in, ये हमारी आईडी है, फिर स्लैश लगाइए ABHA लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए V3 लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए और रजिस्टर लिखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दूसरा चरण जो आएगा वो ये कि आप आधार का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, ये ऑप्शन जहां पे है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना है, उसमें घोषणा बॉक्स होगा जिसको आप चुने और अगला उसमें लिखा होगा, अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट या अगला लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आ जाएगा, ठीक है। अब आपको OTP वहीं पर डालना है जहां पर उसको लिखना है, सामने आपके स्क्रीन पर वो ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें, ऐसा करने के बाद आपका संचार का जो विवरण है वो दर्ज करें, और जब ये सारी चीजें आप दर्ज कर देंगे तो आपका आभा पता बनाया जाएगा।
1: ये तो बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है आशीष।
0: हाँ, सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार वो करेगा उसके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलीकरण।
1: जो लोग इंटरनेट आजकल तो सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और रजिस्टर खुद ही मोबाइल पे करते हैं बहुत सारी चीजें, तो हमें उम्मीद है कि श्रोता ये लोग खुद ही कर लेंगे।
0: हाँ, या जन सेवा केंद्र है,
1: जन सेवा केंद्र पे कर सकते हैं,
0: ठीक है। और ये दूसरा जो विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो भी मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए आपका जो लिंक है वो है http://, लगाइए abha.abdm.gov.in जो हमारी आईडी है सरकार की, फिर /ABHA/V3/register, ये लिखने के बाद क्लिक करें तो आपके सामने एक पन्ना खुलेगा जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए पर क्लिक करें। वहां पे ये एक ऑप्शन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए, इस पर क्लिक करिए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और घोषणा चुने आगे बढ़े, यानी कि आगे बढ़े वाली जो घोषणा है उसको क्लिक कर दें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप ये करेंगे अपने रजिस्टर मोबाइल पर आप देखेंगे कि एक ओटीपी आया होगा जिसको दर्ज करें सामने, और फिर वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला और राज्य जैसे विवरण आएंगे जिसको आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है उसकी फोटो उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे आपका आभा नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लें। आपका आभा नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आभा कार्ड के साथ हेल्थ केयर का जो भविष्य है वो वाकई में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो सुव्यवस्थित हो जाती है और टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन भी होता है। जैसे आभा कार्ड वर्चुअल कंसल्टेशन को भी सपोर्ट करता है जिससे रोगियों को दूर से हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलती है भावना, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्र के लोग जो हैं उन्हें लाभ हो सकता है।
1: यानी कि फोन से भी आप अपने दवाओं की जानकारी पा सकते हैं।
0: हाँ, मतलब उसमें अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप ये भी जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अनिवार्य सूचना क्या है, आभा के साथ CGHS लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। CGHS जानती है क्या होता है? केंद्र सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इसको लिंक करना जरूरी है और इसके भी कई सारे फायदे हैं।
1: वो क्या है आशीष?
0: वो ये है कि सुव्यवस्थित सेवाएं हो जाती हैं आपकी, जो केंद्र की सेवाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है, बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये अनिवार्य लिंक जो है वो सरकारी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है जिससे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
1: आशीष, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है मन में और वो ये है कि ये आभा एड्रेस क्या है?
0: हाँ बिल्कुल, सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर न मिले तब तक चर्चा का भी क्या फायदा भावना। तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा, आभा जैसा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आभा एड्रेस जो है एक विशेष पहचानकर्ता के रूप में काम करता है।
1: अच्छा।
0: यानी कि आपका जो आभा नंबर है वो एक विशेष पहचान है,
1: आधार कार्ड नंबर की तरह।
0: बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर की तरह, ठीक है।
1: हाँ।
0: तो आभा एड्रेस एक विशेष पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है जो अनिवार्य रूप से स्वघोषित यूजर नेम है आपका, ठीक है, जो आप अपना बनाते हैं, और ये आपको अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में शेयर करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है।
1: आशीष, आपने सारी बातें तो बताई, लेकिन हमने बहुत पहले ही प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, बार बार ये आभा अकाउंट ये आ रहा है, ये अकाउंट, ये खाते का क्या मतलब है? क्या इसमें पैसे भी जमा करने पड़ेंगे या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे लिंक करने का ये क्या अर्थ है, जरा समझाइए थोड़ा।
0: नहीं बिल्कुल भावना, ये आपके दिमाग में आई हुई एक बात है और कहीं ना कहीं हो सकता है कई श्रोताओं के मन में भी ये बात आए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आभा कार्ड प्राप्त करने की जो लागत आपको लग रहा है ना कुछ होगी, ये बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आभा कार्ड मुफ्त है। आपको अगर अपनी आभा आईडी बनानी है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने आईडी बनाई है तो। लेकिन अगर आपको आभा के तहत कवर ना की गई किसी भी अतिरिक्त हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो आपको उनके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।
1: अच्छा आशीष, अब ये बताइए कि कार्ड रजिस्टर करने में कितना लागत लगता है?
0: देखिए, मैंने बताया पहले भावना कि ये सब कुछ मुफ्त है, आप मुफ्त में आभा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी आभा आईडी बना सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
1: मतलब अगर हम इंटरनेट यूज करते हो तो खुद ही जाकर, या हमारे घर में अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो खुद भी डाउनलोड, ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ चूंकि बात आभा की हो रही है, तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आयुष्मान कार्ड के तौर पर हमारे देश में चलाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं एक लाइन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं, वो देश भर में पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उस पर हर वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस हेल्थ केयर का लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: आशीष, ये आयुष्मान कार्ड और ये आभा कार्ड, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या दोनों बनवाने हैं कि एक ही से हमको सुविधा मिल जाएगी? ये जरा हमको थोड़ा सा समझाइए।
0: ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बीच अंतर जो है वो ये है कि आभा कार्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जबकि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हेल्थ केयर लाभ प्रदान करता है। अब एक बात और जो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि आभा कार्ड के उपयोग में मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने, हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाने और सुव्यवस्थित उपचारों के लिए बीमा विवरण लिंक करने के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी शामिल की गई हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आता है कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करता है या नहीं?
1: जी बिल्कुल,
0: ये भी आपके मन में आ रहा होगा।
1: बिल्कुल मन में आ रहा था, हम अगला प्रश्न ही आपसे करने वाले थे, पूछने वाले थे।
0: हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नहीं, इसका जवाब है नहीं। फ्री में कोई ट्रीटमेंट आभा कार्ड ऑफर नहीं करता, क्योंकि आभा आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने की एक व्यवस्था है।
1: तो ये जो अकाउंट शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो अकाउंट सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए है स्टोर
0: करने के लिए? ये अकाउंट वैसा ही है जैसे आप अपने इंटरनेट पर कहते हैं ना कि हमारा जीमेल अकाउंट है, हमारा याहू अकाउंट है ना, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, या हमारा ट्विटर या एक्स का अकाउंट है। तो जैसे वो खाता है, वैसे ही एक एप्लीकेशन जिसमें बना हुआ एक ऐसा खाता जो आपकी जानकारियां स्टोर करता है,
1: जो हमारे पर्चे, जो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी सारी विवरण इसमें स्टोर करके रख देगा।
0: तो इसीलिए कहते हैं कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, बल्कि ये हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जैसे मेडिकल खर्चों को कवर नहीं करती है। ठीक है
1: जी आशीष,
0: 2-3 सवाल और जो अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उसका भी एक बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर भी है नहीं। दरअसल आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करता, इसे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने, जैसे मैंने पहले बताया, और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बेहतर एक्सेस के लिए आप इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के साथ लिंक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है भावना, पता है आपको
1: आशीष,
0: अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आभा कार्ड कैशलेस है? तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है कि आभा कार्ड खुद में तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बीमा विवरण स्टोर करने में मदद जरूर करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्लान से लिंक होने पर कैशलेस क्लेम के लिए जरूर किया जा सकता है। ठीक है,
1: कैशलेस क्लेम,
0: जी कैशलेस क्लेम के लिए आप
1: लिंक
0: उसका
1: करेंगे अपना बीमा को, तब वो
0: तो जैसे आपने मान लीजिए कैशलेस इलाज कराया, तो उसका क्लेम करने के लिए जरूर ये आपके काम आएगा। ठीक है, एक सवाल और भी आता है, आभा कार्ड के लाभों की लिमिट क्या है? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आभा कार्ड के लाभों की फाइनेंशियल लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के रूप में चूंकि ये कार्य करता है, इसलिए जो मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित एक्सेस आपको देता है, लेकिन इलाज की लागत को कहीं से कवर नहीं करता। तो ये हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम आभा आईडी बना लेंगे तो हमारा सब कुछ मुफ्त में हो गया।
1: बिल्कुल, या बिल्कुल, आमतौर पे ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है आभा कार्ड हो सकता है कुछ लाभ मिले। तो श्रोताओं से कहना चाहिए,
0: लाभ तो बहुत बड़ा है इसका,
1: लाभ सिर्फ रिकॉर्ड को रखने तक ही ये बहुत जरूरी है। ये
0: तो ये लाभ
1: पुराने से पुरानी बीमारी जितनी भी होगी वो सारे रिकॉर्ड
0: से मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया
1: जी,
0: ठीक है, आपने उसका आभा कार्ड बनाया है, आपने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी हुई है, अब वो ठीक हो गया। मान लीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बाद में अचानक से उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसके 20 साल पहले वाली बीमारी से जुड़ती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ये कितना बड़ा टूल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसी जानकारी आप कहीं और इकट्ठा करके रख नहीं सकते। तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सरकार की तरफ से सर्वर दे दिया गया है, जहां आप अपना खाता खोलें, अपनी जानकारी सारी उसमें रख दें। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आभा क्या एक निजी है या सरकारी पहल है। तो ये पूरी तरीके से सरकारी पहल है, ये हम सभी जानते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि ABDM है, इसके तहत 2021 में इसको शुरू किया गया था।
1: 2021 तक ये सुविधाएं सभी को मिल दी जा रही हैं
0: और काफी उपयोगी है, ये तो हम देख ही रहे हैं इसके जो फीचर्स हैं।
1: जैसे कि अभी चर्चा के दौरान बात निकल के सामने आई, ये बहुत ही इजी और बहुत ही लाभप्रद है आशीष।
0: बिल्कुल। अच्छा ये भी बात है कि आभा कार्ड बनाने के बाद क्या करें। तो आभा कार्ड बनाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना चाहिए, ठीक है। बीमा विवरण अगर आपके पास कोई है तो उसको अपडेट कर लीजिए। बेहतर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को अगर समन्वित करना है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ में अपनी आईडी भी आप शेयर कर दें, ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भावना, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो हमने आभा को लेकर विस्तार से आपस में चर्चा की है या जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई है, वो उनके बहुत काम आने वाली, क्या कहती हैं आप?
1: आशीष, बहुत काम आने वाली है। और हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने।
0: बिल्कुल। और देखिए, रेडियो चैनल पर भी बहुत सारे हमारे जो गांव हैं, वहां के महिला, वहां के पुरुष, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे विजिट करने भी आए थे। जब हमने उनसे सवाल किया तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड क्या होता है या आभा आईडी क्या होती है या इसके क्या काम है, इसका कैसे हमें प्रयोग करें, कैसे पाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी श्रोताओं की एक श्रृंखला है, अब उन सबको ये बात पता चल जाएगी कि आभा है क्या, और ये कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आने वाली है।
1: बहुत काम आने वाली है आशीष, क्योंकि जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु ही रहा है आभा, और इसके बारे में जो भी आपने बातें बताई हैं, जो जानकारी बातें बताई है
0: जी,
1: वो बहुत ही लाभ होने वाली है हमारे श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपको आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान कार्ड या फिर जितनी भी और हेल्थ की योजनाएं चल रही हैं या बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं, उनके बारे में भी विस्तार से अपने विशेषज्ञों के जरिए या अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहेंगे।
1: तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: और मुझे यानी अपने साथी आशीष और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।

नमस्कार, मैं विपुल अग्रवाल हूँ मुरादाबाद से, और आज यहाँ मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर आने का मौका मिला। कुछ गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अपनी आवाज में आपको मुझे लगता है पसंद आएंगी। तो लीजिए सुनिए गजल जगजीत सिंह की विपुल अग्रवाल की आवाज में। हर

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

उर्दू शायरी में जगह जगह मैं या शराब का जिक्र हुआ है, लेकिन ये शराब की मस्ती को अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे जिंदगी से मोहब्बत की शराब है, तो कहीं महबूब की आंखों की मस्ती का नाम शराब है। अब जो गजल मैं पेश करने जा रहा हूं, उसमें शायर ने शराब के आईने में किस तरह अपनी जिंदगी और महबूब को देखा है वो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। गजल से पहले दो शेर अर्ज हैं। मशहूर शायर नरेश कुमार शाह के ये शेर हैं।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।